नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से यह आकाशवाणी जलंधर केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1947 दे विशाख महीने की 28 तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 226 दे महीने की मई महीने की 18 तारीख है। इस वेले सवेरे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज की सभा हुण शुरू हुंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियों का निघा स्वागत करता है।

नमस्कार, लो हुण सुनो साडे इस मीटर ते प्रसारित होण वाले अज रात 11 बजे तक दे खास प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां। हुण तो थोड़ी देर बाद तुसीं सरवण करोगे भगती रस दा प्रोग्राम वंदना, ठीक 6:05 ते 7:02 ते तुसीं सुनोगे साडा मॉर्निंग इनफोटेनमेंट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। 8:03 ते तुसीं सुनोगे पंजाबी च खबरां। तुहाडी हार्ट बीट नूं पंजाबी बीट सॉन्ग दे नाल एनर्जेटिक बनाएगा प्रोग्राम अड्डी टप्पा, ठीक 8:40 ते। ठीक 9:00 तुसीं सुनोगे अपना फेवरेट प्रोग्राम यानी दिल अपना पंजाबी, जिथे तुहाडी शिरकत होएगी व्हाट्सएप मैसेजेस ते ऑडियो राही। दिलां नूं सुकून देने वाले मिठे मिठे हिंदी फिल्मी गीत तुसीं सुनोगे प्रोग्राम गीत बहार च, ठीक 10:02 ते। फरमाइशी प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच तुसीं अपने पंजाबी गीतां दी फरमाइश

इच्छा पूरी करा सकते हो। समा रहेगा 11:02। 12:02 ते तुसी सुनोगे रोजाना रोजाना जिंदगी दे नाल जुड़िया प्रोग्राम होम स्वीट होम। दोपहर दे 1:00 तुसी इंजॉय करोगे फिल्मी हिंदी गीतां दा प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। साढ़े शायर दोस्त लई खास प्रोग्राम दिल अज शायर है ठीक 2:00 जिथे तुसी अपने लिखिया शायरियां जो अपने मनपसंद शायर दी शायरी सानू व्हाट्सएप ते भेज सकदे हो। ठीक 3:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर साढ़े दिल केंद्र तो। ठीक 4:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर। युवा दोस्तों का खास प्रोग्राम युवानी लेके हाजिर होंगे युवा दोस्त ठीक 5:00 तो लेके 6:00 तक। जिंदगी नूं प्यार करन दे चेहरे दे मुस्कान लियाउण वालियां गल्लां होणगियां प्रोग्राम लव यू जिंदगी विच ठीक 6:00। फिल्मी दुनिया दियां गल्लां दे नाल रूबरू होवांगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच ठीक 7:00। अठ बज के दो मिनट होएगा प्रोग्राम मसाला मिक्स। नौ बज के दो मिनट तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम दिल चाहता है जिदे विच तुसी अपनी हिंदी दे पंजाबी मूवीज दियां गीतां दी फरमाइशां पूरी करा सकते हो। रात नूं होर खास ते महफिल लगाएगा प्रोग्राम शामे गजल ठीक 10:00 तो लैके 10:30 तक। तक तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। FM न्यूज हेडलाइंस तुसी सुनोगे आपो अपने टाइम ते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के तीजे पड़ा ते स्वीडन पहुंचे। नवी अते नवीन योग ऊर्जा बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश दे एक दिन विच रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग नू सफलतापूर्वक पूरा किया है। कांग्रेस नेता वी डी स्तीसन की अगवाई वाली नवी केरलम सरकार अज तिरुवनंतपुरम विच सौ चुकी है। सरकार ने कहा है कि CBSE दियां 12वीं दियां जमात दियां प्रीख्यावां विच ओएन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली नाल मुलांकण विच पारदर्शिता अते निरपक्षता वधी है। ईरान ने ऐलान किया है कि ओ फौजी साजो समान ले जाण वाले दुश्मन दे जहाजां नू हॉर्मूज जलमार्ग तो लंघन की इजाजत नहीं देगा। नेपाल दे पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट से चढ़ के इतिहास रच दिता है। गुरदासपुर हैंड ग्रेनेड मामले के संबंध में 3 व्यक्ति गिरफ्तार। पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने सहकार भारती पंजाब जागरूकता संगो सठी विच मुख मेहमान वजो शिरकत की। उन्होंने सहकारिता अंदोलन नू पिंडा दे विकास अते समाजक मजबूती दा अहम आधार करार दिता है। पंजाब विच 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नू पर खरड़ दियां चोणां मुलतवी करन संबंधी निर्देश जारी।

जी दोस्तों, म्यूजिकली यर्स तो सिजाना नहीं है, ट्यूनिंग जुदे 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से ना 103.6 मेगाहर्ट्ज़ भी थे। मैं हाँ थोड़ी आरजे दोस्त राहिल, तो तुसी जानी गई हो, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग जलंधर। फिर साढ़े सारे दोस्तों जेडे कि सानू सुन रहे हैं जी, जी आया नू दे गुड वाली मॉर्निंग।

जी तो सारे ट्यूनिंग कितने 102.7 एफएम रेनबो दे नाल नाल 103.6 मेगा हर्ट्ज़ वे ते कई सारे दोस्त सानू सुन रहे ने न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप राही। बिल्कुल जी, न्यूज़ ने एआईआर ऐप हुण की हैगी है क्योंकि तुसी सानू रेडियो दे थ्रू सुनदे। जेकर तुसी अपने फोन दे राही भी सानू सुनना चाहुंदे हो ते अपने प्ले स्टोर ते जाके न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप डाउनलोड कर सकदे हो ते साडे नाल जुड़ सकदे हो, साडे प्रोग्राम सुन सकदे हो ते साडे सोशल मीडिया हैंडल्स राही भी जुड़ना चाहुंदे हो ते जलंधर आकाशवाणी पेज जिहड़ा है उत्ते जाके तुसी सानू सर्च कर सकदे हो। कहिंदे जिंदगी दे विच ना जे तुसी कोई एक मुकाम हासिल कर लो ते तुहानू उहदे विच खुशी मिलदी है ते उहदे विच ही अपने आप नू चैलेंज करदे रहना चाहिदा है। हुण तुसी कहोगे ये राहिल कहना की जा रही है, बिल्कुल जी दसदे आ। एक इंसान दी उहदी जिंदगी दी दास्तान ही सुनान जा रही है। कहानी दे विच की है, इंसान ना सिर्फ पहाड़ चढ़िया बल्कि इतिहास ना भी हर बार एक नवा पन्ना लिखिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं गल कर रही हूँ कामी रीता शेरपा की, जिहड़े कि 17 मई 2026 नूं 56 साल की उम्र के उन्होंने दुनिया के सब तो उच्चे पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट नूं 32 बार चढ़ के जोड़ा है रिकॉर्ड बनाया। हूँ 32 बार एक बार थोड़ी चढ़े है, किन्नी बार वो चढ़े तो इस बार 32 जोड़ा उन्होंने रिकॉर्ड सैट कर दिता है। सवेरे 10:12 बजे जिहड़ी चढ़ाई सी 8840

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार

जी दोस्तों, तो सारी नहीं है ट्यूनिंग कितने 102.7 एफएम रेनबो ने नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज भी ते प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जलंधर, थोड़ी आपनी आज दोस्त राहिल दे नाल। लो जी, फिर चक दो, क्योंकि जो ही तुसी कर रहे हो काम चंगी तरह करो। जे तुसी रेडी हो रहे हो, ओ हाँ रेडी हो तो मैनू याद आया, क्योंकि अजकल जड़ी गर्मियां दा दिन जड़ा गर्म काफ़ी हो चुके ने दिन, है ना। तो कई बार आप करते हैं ना, जड़े अपने शूज़ पाते हैं या कपड़े जड़े है आप हैंगर से टंग दें या फिर दीवार के नाल टंग दें, है ना। कई बार उन्होंने इदा ही पा लें, जो सवेरे सवेरे फटाफट कोट पाना होंगे, क्योंकि रोज़मर्रा के कई कपड़े आप इदा ही है कि पा लें, है ना। उन्होंने झटकते नहीं हाँ। कई बार की होंगे कि जड़ी मकड़ी या फिर कोई जड़ा कीड़ा होंगे जोड़ा कि बहुत ज़्यादा जहरीला होंगे, वो सानू कट लेंद। इस करके अपनी जोड़े शूज़ है उन्होंने भी चैक करके बिल्कुल पाना चाहिए। इदा नहीं है कि बस सवेरे देखे तो लो जी पैर पाओ तो चल मेरे भाई, ना जी ना। एक बार प्लीज़ जरा चैक कर लेना चाहिए है। जो तुम कपड़े खूंडी टंगे हुए हैं उन्होंने भी गल कर रही हैं, नाल दे नाल ही अलमीरा दे विच भी कई बार कपड़े जड़े ना झटक के ही पाने चाहिए, क्योंकि मकड़ियाँ जड़ी होंगे या फिर कीड़ियाँ जड़ी होंगे वो कड़ा किसी तो पुछ के आदि जा ने। जी जी, खर्चियां दी भी गल हो जाती है। खर्चे कदों हो जाते हैं जो आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि कई बार आप यही वेखते हैं। कई बार कि सानू तो मैनू लगता है कि आम हर वारी वेखते हैं आप कि साढ़े जिहड़े दोस्त है लिसनर जिहड़े सानू सुन रहे हैं उन्हां विचों भी शायद कोई होण जिहड़े कि जाते तो है अपनी जिहड़ी है स्कूटी ते या फिर बाइक ते, लेकिन हैलमेट नहीं लगाते क्योंकि बालों का जिहड़ा है स्टाइल खराब हो जाएगा। इस करके देखो, गर्मियों के सनस्क्रीन कुड़ियों की जिहड़ी इंपोर्टेंट चीज़ होंगी, लेकिन हैलमेट जरूर पहुँच जाती ने। ना जी, हैलमेट ना भुलिया करो, अपनी जोड़ी डॉकूमेंट्स है वो जरूर रख्या करो। हम डॉकूमेंट की भी गल कर लें, जे तुसी अपनी डॉकूमेंट है वो कैरी नहीं करना चाहते तो अपने फोन के डिजीलॉकर ऐप तुसी डाउनलोड कर सकते हो। उसके सारे जड़े दस्तावेज यानी कि डॉकूमेंट है, जिमें कि RC हो सकती है, थोड़ा वोटर कार्ड हो सकता है, थोड़ा आधार कार्ड हो सकता है, वो आराम के नाल सुरक्षित है। तो जे थानू पुलिस वाले साहब फड़ लैन, यानी कि बिल्कुल जी जिन्हों की गल कर रही हूँ ट्रैफिक वाले फड़ लैन, तो तुम उन्होंने अपनी ये डॉकूमेंट्स ऑनलाइन यानी कि फोन के भी दिखा सकते हो। बिल्कुल जी, जे वो कहना कि रियलिटी के कहना ये भी चलते हैं हूँ तुम ना नहीं कर सकते। फिर गर्मियों के जिनी सनस्क्रीन जरूरी है उन्ना क ही हर रोज़ दी लई साडे लई रोज़मर्रा दे विच हैलमेट उन्ना जरूरी है। तो कार चलाने वाले भी सुन लो, सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी है लाइफ दे विच।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

वैसे दे भारत दी जड़ी सेना है ना, यानी कि जय हिंद दी सेना हर एक जड़े मुकाम दे विच सब तो अगे है। हर 24 घंटे यानी कि हर दम सेना जड़ी है साड़ी तैयार रहती है साड़ी सुरक्षा दे लई, ते साड़े जिन्ने भी जवान ने उन्हां नू सल्यूट।

कि हाँ देखो जी नहीं नहीं इन्ने जीते से ये हैदराबाद इन्ने मैच जीते हूँ देखते हैं कौन जीते। देखो जी हार जीत जो पलड़ा है ना वह कदे भी पलट सकता है तो फिर जी अजम्पशंस नहीं लगा सकते अपन। जी गेम्स की गल कर ही रही हैं क्रिकेट की गल तो हो ही गई है, चलो होर गल्लां भी कर लें हम। चलो गल करते हैं रैसलिंग की, हाँ जी कुश्ती की भी गल कर लें बिल्कुल जी हम गल करते हैं क्योंकि 23 तो लैके 25 मई तक 2024 यानी कि इसी जोड़े हफ्ते दे विच ए मैच खेड़े जाना है जोड़ा कि न्यू दिल्ली दे विच हो रहा है एशियन बैल्ट रैसलिंग अलियास चैंपियनशिप जी हो जा रही है जिस दे विच सीनियर यानी कि अंडर 17 और अंडर 15 कैटेगरी दे विच जोड़ा मैच खेड़े जाएगा। पूरी एशिया तो रैसलर जोड़े हिस्सा ले रहे हैं, एक ट्रेडिशनल रैसलिंग स्टाइल होने वाला है जिसे बेल्ट पकड़ के मुकाबला किया जाएगा बहुत ही खतरनाक टेक्निक्स के साथ।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथनबर्ग विच स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन नाल गलबात की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन दी कंपनियों को भारत में निवेश वधाउण का सद्दा दिता है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन अज केरलम के मुख्यमंत्री वजो सहुं चुकणगे। दक्षण पश्चिमी मानसून के आम नालों 6 दिन पहला 26 मई को केरलम पहुंचने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकटों से हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात गोथनबर्ग विच स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन नाल गलबात की। श्री मोदी कल स्वीडन के 2 दिनों दौरे ते गोथनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने दोहां देशों विचकार दवले संबंधों में शानदार योगदान अते उन्हां दी दूरदर्शी अगवाई लई स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस नाल सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी देश के मुखी ने दिता जाने वाला सब तो वड्डा सम्मान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। वफद पदरी गलबात दौरान दोहां आगुआं ने भारत स्वीडन संबंधों के समुचे पहलुओं की समीक्षा की। वह दवले संबंधों रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण लई सहमत होए। उन्हां व्यापार ते निवेश तकनोलॉजी ते नवीनता पुलाड़ उभर दियां तकनोलॉजियां रक्षा ते सुरक्षा छोटे ते दरम्याने उद्यमां खोज ते लोकां दरम्यान संबंधों मजबूत करन बारे भी चर्चा की। दोहां नेतावां ने खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां ते भी विचार वटांदरा किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ते बहुपक्षी संगठनों विच सुधार की लोड़ पर जोर दिता ते बहुपक्षी मंचों में सहयोग वधाउण लई सहमत होए। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल तब्दीली ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के खेत्र में भारत की प्रगति की शलाघा की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय भाईचारे के उसारू योगदान की भी प्रशंसा की। गोथनबर्ग पहुंचन ते श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय नाल मुलाकात की। भारतीय प्रवासियों ने संगीतक पेशकारियों नाल श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथनबर्ग में चुनिंदा स्वीडिश कंपनियों के सीईओस नाल गलबात दौरान कंपनियों को निर्माण ग्रीन हाइड्रोजन मिशन साफ सुथरी ऊर्जा और होर खेतरों में भारत में अपनी मौजूदगी वधाउण की अपील की। भारत और स्वीडन दियां लोकतंत्र पारदर्शिता नवीनता और स्थिरता दियां सांझियां कदरां कीमतां ते जोर दिंदिया श्री मोदी ने स्वीडन दियां नवीनता और स्थिरता समर्थावां नूं भारत के विशाल आकार प्रतिभा और विकास की गति नाल जोड़न का सद्दा दिता। भारत की तेज आर्थिक तब्दीली को उजागर करदे श्री मोदी ने भारत की मजबूत घरेलू मंग डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा निर्माण विस्तार और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र किया। भारत स्वीडन संबंधों बारे श्री मोदी ने कहा कि दोवें देश खरीददार विक्रेता संबंधों तो उपर लंबे समय की उद्योगिक साझेदारी विकसित करने लिए काम कर रहे हैं।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों ते सीईओस ने भारत में डूंगी दिलचस्पी दिखाई है। पिछले कई सालों में

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग विच स्वीडन दे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन नाल गलबात कीती। भारत अते स्वीडन ने आपसी सहयोग नू व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण दा फैसला कीता है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन दीयां कंपनियां नू भारत विच निवेश वधाउण दा सद्दा दिता। श्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव में आज नॉर्वे पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता वी डी स्टीनसन आज केरलम के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकेंगे। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 69वें विश्व सेहत असैम्बली विच शामिल होने लई स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। पंजाब विच 26 मई नूं होण वालियां नगर निगम चोणां नूं स्वतंत्र निरपक्ष अते शांतिपूर्ण ढंग नाल नेपरे चढ़न लई सूबे दे 23 जिलियां विच आईएएस अते सीनियर पीसीएस अधिकारियां नूं निगरान नियुक्त कीता गया है। गैंगस्टर ते वॉर मुहिम दे 116वें दिन कुल पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच 598 थावां ते छापेमारी दौरान 315 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है। दक्षण पछमी मानसून दे आम नालों 6 दिन पहला 26 मई नूं केरलम पहुंचण दी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट विच दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल नूं 5 विकटां नाल हरा दिता है। भारत ने गांधीनगर विच एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 विच एक चांदी दे अते 9 कांसी दे तगमे समेत कुल 10 तगमे जीते ने।

जी हाँ, तो सारे नियर ट्यूनिंग कहते हैं 102.7 FM दिनाल नाल 103.6 MHz भी। तो जी प्रोग्राम शुरू हो गया दिल अपना पंजाबी। हाँ जी, थोड़ी अपनी आज से दोस्त राहिल दिनाल। फिर आज गलबात खास जिहड़ा विषय रहने वाला म्यूजियम ही रहने वाले ने। हाँ जी, अजायब घर, तुसी उत्थे जाके की वेख्या, किन्ने दे नाल गए ते उत्थे दा एक्सपीरियंस तुहाडा किहो जिहा रहा, इस दे नाल ही साडे नाल तुसी सांझी कर सकदे हो अपनी कोई जरूरी जानकारी। फिर पार्टीशन म्यूजियम जोड़ा कि अमृतसर के, मैं लगता है उत्थे तो कई सारे जने घूम के आए होने, क्योंकि जो अमृतसर जाते फिर घूमने तो कई सारिया थावान ने उत्थे। जी, अमृतसर के टाउन हॉल के स्थित है कि बनिया कदों से गा, हूँ 1947 की भारत पाकिस्तान वंड दौरान लोगों ने जो दुख विछोड़े तो कुरबानियां सईया उन्होंने यादा को सामभण के लिए यह म्यूजियम बनाया गया है। ये दुनिया का पहला म्यूजियम है जो पार्टीशन नू समर्पित है। हुण साडे जिहड़े दोस्त इत्थे नहीं गए है उन्हां नू दसदे ने कि इत्थे देखण नू तुहाडे लई की है। देखो, तुहानू पुरानियां तस्वीरां इत्थे वेखण नू मिलणगियां, लोकां दे हाथ नाल लिखे खत सानू वेखण नू मिलदे ने, पार्टीशन दौरान वरतियां गईयां जिहड़ियां चीज़ां सी उह सानू वेखण नू मिलदियां, वीडियो ते ऑडियो कहानियां सानू वेखण नू मिलदियां, क्योंकि डिजिटल एरा है, ये सानू देखण नू मिलण कि उत्थे उस वेले होया की सीगा, उह साडी अक्खां दे सामने उह नज़ारा सानू विखाया जांदा है। ते जिहड़े साडे दोस्त ने यानी कि शरणार्थियां, उन्हां दी यादां सानू वेखण नू मिलदियां ने उत्थे।

हाँ जी भैया दोस्तों, की सोच रहे हो? जल्दी जल्दी सानू मैसेज कर दो। एक बार फिर नंबर रिपीट कर देनी है, 98 55 10 10 27, यानी 9855 10 107।

0: बिल्कुल भी नहीं ना, एक मतलब कट्ठे हो के पूरा पानी एकदम नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक जो थोड़ी बॉटल है उस दे विच तुसी मक लगा सकते हो कि 3-4 घुट, मतलब कि अद्धा गिलास तो बाद इन्ना का मक तुसी लगा लो कि इन्ना इन्ना तुसी पानी पीते रहो हर घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद। उस तो बाद तुसी नारियल पानी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, नींबू पानी हो सकता है, शिकंजी हो सकती, जिदा कि साडे दोस्तां ने सानू दस्सिया है, ते जिहड़ी कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ते बाहरलियां जिहड़ी चीज़ां उन्होंने अवॉइड ही करना चाहिए है इन्हां दिनों दे विच, क्योंकि जिहड़ा तबीयत जल्दी खराब हो जाती है इन्हां दिनों दे विच, ये सानू ज़्यादा वेखन नूं मिलता है। इस करके जे तुहानू कोई इहो जिही दिक्कत आती है कि तुहानू फील हो रहा है कि डिजी डिजी फील हो रहा है, फिर अपनी जिहड़ी हाइड्रेशन उन्हों ठीक रखो, पानी पीते रहो। तो नाल ही साढ़े जिदा दोस्त ने दस्सिया है कि इन्हां ने दस्सिया सीगा कि जिहड़ी है पुदीना बहुत वधिया मनिया जाता है, बिल्कुल पुदीना बहुत वधिया मनिया जाता है, खीरा बहुत वधिया मनिया जाता है, तो नाल ही सौंफ जड़ी है बहुत वधिया, सौंफ ते खानी आपां खाण तो बाद जड़ी मिश्री सौंफ है ना वह चीज़ तुसी शिकंजी दे विच भी पा सकते हो। बिल्कुल सौंफ हो गई है, पुदीना हो गया, थोड़ा जिहा काला नमक तुसी लै सकते हो, तो मिश्री लै सकते हो, इन्हां नूं ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना लो, तो एक शिकंजी मसाला बन जाता है। तो बस ईजी तो है, जल्दी जल्दी गिलास दे विच एक चम्मच पाया, तो थोड़ी जी बर्फ पाई या फिर बर्फ अवॉइड करे तो वधिया है, मटके का पानी ठंडा जिहा पाया तो नाल ही पी लिया, यह चीज़ है। तो देखते हैं जी, देखते हैं की कह रही हैं, मैं सुनते हाँ, मैं कहना चाहिए बिल्कुल जी, सुनते हैं साड़ी अगला मैसेज कि इन्होंने भेजा है।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन, भुपिंदर सिंह पिंड चीचा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर तो बोलदा जी।
0: गुड मॉर्निंग
1: सारे ही स्रोतियां नू ते मैडम जी आप जी नू एक बार फिर नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: मैडम जी एक गीत दी दो लाइनां जिहड़ियां मैं आप ही लिखियां वा
0: जी,
1: और मैं चाहना कि सारे स्रोतियां दे सन्मुख करिए, क्योंकि जिहड़ा दर्द विछोड़ा जिहड़ा हुंदा ना सब तो माड़ा हुंदा, ते हाल ए दर्द जिहड़ा अपना बयान करन लगा। तू किथे जाके बैगी नी, सुख चैन तू लुट के लैगी नी, मेरी सेहत भी अद्धी रहगी नी, तू केड़े राहे पैगी नी, मैनू छड के कला तेरे बाजों सोनीए मैं हो गया चला। पहला पुछदी मेरा तू हाल सी, रख दी तू बड़ा ख्याल सी, दुख सुख सांझे कर दी मेरे नाल सी, हुण क्यों छड़ा गी पल्ला। भुपिंदर सिंह तां हो गया नी तेरे बाजों चला, भुपिंदर सिंह तां तेरे बाजों नी हुण हो गया चला। ओके मैडम जी प्ले करियो जरूर
0: जी, धन्यवाद। कई साढ़े दोस्तों मतलब लिखण का शौक है, बहुत वधिया गल है, तो साढ़े अलग अलग प्रोग्राम जोड़े बने हुए इस तरह ही बने हुए कि तुहाड़ी जी कला है वह भी साढ़े सामने आ सके, जिमें दिल अज शायर है प्रोग्राम उद्दे जो तुम शायरियाँ लिखना पसंद करते हो तो उस प्रोग्राम के अपनी शिरकत कर सकते हो, जो इन्होंने लाइनस लिखी बहुत वधिया है। तो देखते हैं अगला साडा जोड़ा है मैसेज कहड़ा कि आया, सुनते हैं की कहना चाहते हैं।
2: FM रेनबो दे उत्ते हाजिर हाँ जी, मैं विनोद संधु जाडला टाउन शहीद भगत सिंह नगर नवांशहर पंजाब तो अज दा दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम पेश कर रहे मैडम राहिल जी नमस्ते सत श्री अकाल ते सुनन वालेयां नूं भी नाल दी नाल
0: जी,
2: बहुत ही वधिया सवेर तो प्रोग्राम पेश कर रहे हो अज, बहुत ही वधिया गलबात कीती, म्यूजियम दे उत्ते चंगी जानकारी भी दित्ती ते विशा भी अज दा म्यूजियम दे उत्ते ही रखिया। मैं गल करांगा अपने एरिए दी, शहीद आजम भगत सिंह जी जिन्हां दा घर खटखट कलां दे विच है
0: जी,
2: चंडीगढ़ रोड जलंधर रोड दे उत्ते है, और बहुत ही वधिया उन्हां दा स्टैचू लग्या होया, नाल दी नाल म्यूजियम बनिया होया, म्यूजियम दे विच बहुत ही वधिया एंट्री गेट दे उत्ते रजिस्टर पिया ते नाल उत्ते भाई साहब बैठे ने, अंदर एंट्री करके जाओ ते बहुत कुछ देखण वास्ते मिलदा। शहीद आजम भगत सिंह जी दे जो खून दे नाल भिजी हुई अखबार, कलम पई, दवात पई, रेत पई, सारियां ही उन्हां दीयां फोटो पईयां ने। उस तो अगे असी चले जाने आ सज्जे पासे नाल दी नाल, बहुत ही वधिया एक वड्डा हाल बनिया होया जिथे कि हर साल जन्म दिन ते नाल दी नाल शहीदी दिन दे उत्ते उत्थे स्टेजां लगदियां ने, अगे बहुत ही वधिया कोरियोग्राफरी चलदी है, हर एक अपना अपना उत्थे किरदार निभांदा है, अगे जाके बहुत ही वधिया सज्जे पासे लाइब्रेरी और खब्बे पासे पार्क ते नाल दी नाले खब्बे पासे बहुत ही वधिया शहीद आजम भगत सिंह जी दा घर जद्दी, ओहदे अंदर सारा ही समान पिया।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है दिल अपना पंजाबी, ते तुसी सानू सुन सकते हो न्यूज़ ऑन AIR ऐप राही भी, जिहड़ा कि तुसी अपने प्ले स्टोर ते जाके डाउनलोड करना है। फिर जाके 102.7 FM रेनबो जलंधर दे नाम दे नाल सर्च करके साढ़े नाल जुड़ जाना है कि साढ़े जड़े दोस्त जड़े बैठे हो विदेशों दे विच बैठे हो साढ़े नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप राही ही जुड़े हुए ने। हुण लुधियाणा वाले जिहड़े साडे दोस्त लुधियाणा तों सानूं सुन रहे ने, उत्थे वी ते पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस दे विच वी काफ़ी सारियां चीज़ां इहो जिहियां है जिहड़े सानूं वेखण नूं मिलदी है, जिवें कि उत्थे है म्यूजियम ऑफ सोशल हिस्ट्री एंड रूरल लाइफ ऑफ पंजाब, सानूं वेखण नूं मिलदा है। इत्थे पंजाब दे पुराने पिंडां दी जिंदगी अते लोक सभ्याचार नूं सांभण जिहड़े उत्थे सांभ संभाल हुई है उह सानूं वेखण नूं मिलदे। ते साडे जिहड़े दोस्त ने जिहड़े पंजाब दे कल्चर बारे जानना चाहुंदे ने, अपनी रिसर्च करना चाहुंदे, इत्थे ज़रूर विजिट कर सकते हैं, उत्थे जाके देख सकते हैं कि पुराने टाइम दे विच पुराने खेतीबाड़ी दे जिहड़े संद हुंदे सी ओह किद्दां सीगे, चरखे जिहड़े है किद्दां दे यूज हुंदे सीगे, या फुलकारियां जिहड़ी हैं सानूं बहुत देखण नूं मिलदियां ने। फुलकारी एक अलग ही साडे लई एक अमान है क्योंकि साडे पंजाब दी फुलकारी बहुत ज़्यादा जिहड़ी है चर्चा दा विषय हमेशा ही रहिंदी है। मिट्टी दे भांडे वेखण नूं मिलदे ने सानूं, पंजाब दे घरां दे मॉडल उस वेले किहो जिहे हुंदे सी ओह सानूं चीज़ां वेखण नूं मिलदी है। जे असीं गल कह सकदे हां कि इत्थे जा कि अज दी पीढ़ी नूं पता लगदा है कि साडे पुरखे किन्नी सादगी नाल जीवन बिताउंदे सी उस वेले।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, गीत बहार दे, गीतां दी बहार दे विच। हुण आ गई है मेरी वारी। सो दोस्तों, गर्मी बहुत हो गई है, मैं हुणे आ रही सी ते इन्नी गर्मी लग रही सी, मन कर रहा सी कि बस कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए। सो मेरे मन विच आया कि ज़रूर तुसी भी जे इस टाइम घरों निकल रहे होंगे ते जे तुहानू वॉक करनी पै रही होगी तो गर्मी बहुत लगेगी। सो जेकर घरों निकल रहे हो, वॉक करनी है, चाहे कन्वेंस ते जाना है, जिद्दां भी है, अपने कोल हाइड्रेशन चेक जरूर रखो। जी, हाइड्रेशन चेक मतलब पानी दी बॉटल कदी भी कैरी करनी ना भुलो इस दौरान, क्योंकि साड़ी बॉडी नू पानी दी बहुत जरूरत हुंदी है। और यह नहीं कि तुहानू जदों प्यास लगे तुसी उदों ही पानी पीना, वेट करनी है कि बहुत प्यास लगेगी तो मैं तां ही पानी पीना है, नहीं, तुसी उदां भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पींदे रहना है। और जदों प्यास लगती है ना, इहदा मतलब तो यह है कि थोड़ी बॉडी ऑलरेडी माइल्डली डिहाइड्रेटेड है, हाँ, तो इनू जरूरत है हुण पानी की। सो हमेशा अपने को एक विजुअल रिमाइंडर के तौर पर बॉटल रखनी ही रखनी है, चाहे प्यास लगी है चाहे नहीं लगी, अपने नाल बॉटल जरूर रखो ता कि जो बॉटल नू देखिए तो अपने आप दिल कर पवे जां याद आ जाए कि पानी जरूर पीना। सो पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी तो राहत का होर कोई जरिया नहीं हुंदा। सो अपना ध्यान खुद रखना है, जो दिन वेले निकलन लगे हाँ तो अपनी पानी की बॉटल चुकना बिल्कुल नहीं भुलना, होर तुसी चाहे जो मर्जी भुल जाओ। सो लो जी, प्रोग्राम गीत बहार नू अगे तोरदे हाँ ते प्ले करन जा रही हाँ तुहाडे लई आतिफ असलम दी आवाज़ दे विच।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: सुन रहे हो जी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार। वेल दोस्तों, गीत बहार दे विच ना मेरा आज मन कीता कि थोड़े नाल गल कीती जाए कि बिजली दी बचत किवें करनी है, क्योंकि गर्मियां दे विच ना साडे बिजली दे बिल बड़े लंबे लंबे हो जांदे आ ते असी बिजली दी बचत किवें करनी है। दोस्तों अक्सर ना अणगहली दे विच ही जां लापरवाही कह लो कि असी ना जिवें चार्जिंग ते फोन लगाया है ते चार्जर साडा चल रहा पिछों स्विच ऑन है ते असी अपना फोन उतार लैने आ ते चार्जर लग्या होया है स्विच ऑन है, इदां नहीं करना। तुहानू की लगता है कि तुहाडी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही? नहीं, जदों तुसीं अपना चार्जर इदां ही छड्ड दिंदे हो, प्लगड छड्ड दिंदे हो, तां इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। इह चार्जर इलैक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा है। ये ना समझो कि चार्जर लगे स्विच ऑन है बट साड़ी बिजली कंज्यूम नहीं हो रही। बिजली हो रही है कंज्यूम। सो जेकर असी एनर्जी सेव करनी है, अपनी इलैक्ट्रिसिटी बिल दी लेंथ थोड़ी जी घटानी है, तो प्लीज़ जदों तुसी फोन हटाते हो तो चार्जर नाल दी नाल बंद कर दिया करो। इस तो अलावा होर भी असी कई बार वॉशिंग मशीन बंद हो गई बट असी पिछों ऑफ करना भूल जाने, नहीं इदा नहीं करना। इलैक्ट्रिसिटी बचाने दे विच ये साडा कारगर साबित होएगा कदम जेकर असी चुकते हैं। तो है कुछ भी नहीं, बस थोड़ी जी अणगहली नू थोड़ी जी लापरवाही नू साइड ते रखना ते देखियो थानू लगेगा कि हाँ असी तो बड़ी वड्डी बचत कर ली। कई बार छोटिया छोटिया बचतां जिहड़ियां हुंदियां ने ना वड्डे खजाने भर देंदियां ने। सो अपनी हैबिट बनाइए कि जदों भी असी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे तो ध्यान रहे कि विचों स्विच असी ऑफ करना है। और बिजलियां दे जिहड़े बिल है ना, गर्मी च बड़े लंबे लंबे हुंदे आ, थोड़ी जी बचत असी करांगे ते देखना बिजली दे बिल दी जिहड़ी लंबाई है वह घट हो जाएगी। सो प्रोग्राम गीत बहार ते गीत बहार नू मैं हुन अग्गे तोरदी हाँ ते तुहाडे लई प्ले करन जा रही हाँ प्यारा जा गीत। यस, अरिजीत सिंह दी आवाज़ दे विच। इंजॉय करो ए गीत।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी। गीत बहार दे, गीत बहार दे विच हुन असी गल करांगे अवेयरनेस दी। जी बिल्कुल, असी जदों भी कोई मेडिसिन लैने आ या पैक्ड फूड लैने आ ते सब तो पहला से चेक करते हैं कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई, कितने चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई। पर असी अक्सर भुल जाने कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चेक करनी है। यस, एक्सपायरी डेट तो चेक करनी ही है, बट नाल दी नाल असी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चेक करनी है। जेकर बहुत पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है, बेशक तुहानू लग रहा है कि अजे एक्सपायर नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग डेट पुरानी है, तद भी असी उन्हें यूज़ करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैशनेस ऑलवेज मैटर। फ्रैशनेस बहुत जरूरी है, अपनी सेहत का असी ध्यान रखना है, अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की सेहत का ध्यान रखना है। सो एक्सपायरी डेट के नाल नाल मैनुफैक्चरिंग डेट भी जरूर चैक करिए, क्योंकि मैनुफैक्चरिंग डेट तो सानू फ्रैशनेस का पता लगता है कि जिहड़ी चीज़ असी कंज्यूम करन जा रहे हैं यह किन्नी क पुरानी है। हाँ, तो जेकर असी ऐसा करांगे तो फिर असी अपनी सेहत का बहुत सोहनी तरह ध्यान रख रहे होवांगे। तो लो जी, प्रोग्राम गीत बहार, तो गीत बहार दे विच अगला गाना बहुत ही प्यारा अलका याग्निक जी की आवाज़ दे विच प्ले करन जा रही हाँ। इंजॉय करो उदित नारायण ते अलका याग्निक की आवाज़ दे विच आ जा माहिया।

अगले प्रोग्रामा दे विच भी होएगी मुलाकात, पर जानदे जानदे एक गल मैं होर करके जानी है दोस्तों, वो है MRP रूल। यस, तुहानू पता है कि कोई भी शॉपकीपर साढ़े कोलों MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो वध एक पैसा भी नहीं ले सकता, चाहे वो तुहानू कोई चीज़ ठंडी करके, सपोज पानी ठंडा करके दे रहा है, चिल्ड वाटर दे रहा है, या कोई हैवी आइटम दे रहा है, या उन्हें प्रोसैस करके दे रहा है किसी भी तरह, पर वो तुहाडे कोलों MRP तो एक पैसा भी वध नहीं लगे ले सकता। सो बी अवेयर कंज्यूमर, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो पूरी अवेयरनेस के नाल चीज़ खरीदी जाए। ते हुन समा हो गया जी प्रोग्राम दे विच तुहाडे कोलों इजाजत लैण दा, ते मैनू जाना पएगा। सो जांदे जांदे एक गीत मैं तुहाडे लई जरूर प्ले करके जावांगी, ते तुसी इसे तरह ही बने रहना है FM रेनबो दे नाल। कुछ ही पलां दे बाद मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच, ते प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का। फिलहाल गीत बहार दे विच मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हां प्यारा जिहा गीत, जुबिन नौटियाल दी आवाज़ दे विच, एंजॉय करो।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो ते हुन पेश ने FM न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथनबर्ग विच स्वीडन दे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोरसन नाल गलबात कीती। भारत अते स्वीडन ने आपसी सहयोग नू व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण दा फैसला कीता है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन दीआं कंपनियां नूं भारत विच निवेश वधाउण दा सद्दा दित्ता। श्री मोदी अपने पंज देशां दे दौरे दे चौथे पड़ाव विच अज नार्वे पहुंचणगे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन अज केरलम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व सेहत असेंबली विच शामिल होने लई स्विट्जरलैंड पहुंच गए ने। पंजाब विच 26 मई नूं होण वालीआं नगर निगम चोणां नूं सुतंतर निरपक्ष अते शांतिपूर्ण ढंग नाल नेपरे चाढ़न लई सूबे दे 23 जिलियां विच IAS अते सीनियर PCS अधिकारियां नूं निगरान नियुक्त कीता गया है। गैंगस्टरां ते वार मुहिम दे 116वें दिन कल पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच 598 थावां ते छापेमारी दौरान 315 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता। दक्षण पछमी मानसून दे आम नालों 6 दिन पहलां 26 मई नूं केरलम पहुंचण दी संभावना है। IPL क्रिकेट विच दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स नूं 5 विकटां नाल हरा दित्ता है। भारत ने गांधीनगर विच एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 विच 1 चांदी दे अते 9 कांसी दे तमगियां समेत कुल 10 तमगे जीते ने। ये सन FM न्यूज़ हेडलाइंस।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है पंजाबी तड़का जी। पंजाबी तड़का मतलब तड़का लगा लिया होगे तुसी, क्योंकि थोड़ी फोन कॉल होगी साढ़े प्रोग्राम दे विच तड़के का काम करेगी। सो कॉल करनी है तुसी चीज, नंबर है 0181-2342-174। ए नंबर डायल करके तुसी साढ़े नाल राबता कायम कर सकते हो, गलबात करते हो, कोई किस्सा सुना सकते हो, कोई कहानी सुना सकते हो, कुछ साझा करना चाहते हो साढ़े नाल या साढ़े जरिए लिसनर्स के नाल, ते ओ भी कर सकते हो, अपनी फरमाइश का गीत भी सुन सकते हो। बस करना की है, नंबर डायल करना जी 0181-2342-174। फिर देर किस गल दी, फोन चुको, मोबाइल फोन चुको, ते फटाफट कॉल लगानी शुरू कर दियो। सो जब तक तुसी कॉल लगांदे हो, मैं तुहाडे लिए प्ले करन जा रही हूँ जी अपनी पसंद का पहला गीत। तुसी एंजॉय करो, ते अगला गीत प्रोग्राम दे विच होएगा सिर्फ ते सिर्फ तुहाडी पसंद का।

0: बोलते नहीं तेरा शुकराना मालिका जी। बिल्कुल, हर पल हर समय शुकराना करते रहना चाहिए, क्योंकि शुकराना है जो वो सानू एक अलग ही तरह की शक्ति, एक अलग ही पावर देता है। सो प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का, ते पंजाबी तड़का दे विच पहुँच चुके ने कॉलर साढ़े तक। पर दोस्तों जद कॉल लैन तो पहला मैं एक थोड़े नाल गल जरूर करना चाहांगी। एक नसीहत है कि प्लीज़ अपने दोस्तों का रिश्तेदारों का नाम ना लिया करो जिन्होंने भी गल करनी है, और डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। असं उन्हों की कॉल जरूर पिक करांगे, रिसीव करांगे। तो तुसी किसी भी अपने दोस्त का घर परिवार वालों का किसी का नाम ना लिया करो, वह चंगा नहीं लगता। सो लैने जी अगली कॉल। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार बेटे।
0: नमस्कार जी, की हाल चाल ने, तो कौन बोल रहे हो?
1: हाल चाल बहुत बढ़िया, प्रवीण बोल रहा है जी, गोपाल नगर जलंधर। फिलहाल मैं ठेला लेके मंडी आया सब्जी लै।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। ते फिर की हाल चाल ने, सब ठीक?
1: हाल चाल बहुत बढ़िया जी।
0: थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं लगता तुसी कितने बाहर हो।
1: बस मंडी चो सिलेंडर उतारते पे ने, उतारते उन्होंने।
0: अच्छा जी, पहला तो मैनू ऐ दसो कि फिल्मा फुल्मा देखन दा शौक हैगा, एक्टिंग दा शौक है?
1: बहुत ज्यादा जी,
0: बहुत ज्यादा। ते फिर कोई फेवरेट हीरो भी होना, एक्टर होना कोई फेवरेट?
1: हीरो मेरा हैगा धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन।
0: हाँ, डायलॉग सुनाओगे फिर उन्हां दा अज?
1: ते डायलॉग किदा धर्मेंद्र दा
0: सुना दियो।
1: हां जी, ये हैगा, चलो अमिताभ बच्चन दा सुना देना।
0: जी,
1: मैं तुम्हारे बाप लगते है नाम है मेरा शहंशाह।
0: आहा बहुत खूब। ते एक गल होर, मैं तुहानू कोई भी सेंटेंस दिनी आ, तुसी ओनू धर्मिंदर जी दी आवाज़ दे विच सुनाओ।
1: अच्छा,
0: ठीक है?
1: धर्मिंदर जी।
0: हाँ, तुसी कहंदे ना मेरे फेवरेट है।
1: हाँ जी।

0: जी।
1: एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम पंजाबी तड़का ते लगातार कॉलर्स साढ़े तक पहुंच कर रहे ने ते अगले कॉलर भी पहुंचे ने गल कर देना दे नाल। हेलो
2: निवेदिता जी।

0: सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
0: बीपीओ कोटली थान सिंह, डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो, मिंटू चंदेल जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच।
0: जी शुक्रिया तुहाडा भी।
1: ते फिर गर्मी एंजॉय कर रहे हो?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दुकान ते बैठे हैं,
1: चलो,
0: कस्टमर दी वेट कर रहे हैं। और
1: कस्टमर दी वेट कर रहे हैं ते गीत सुन रहे हैं।
0: हाँ जी, रेडियो तो फिर पहला सुनीदा ना, क्योंकि एक असी हो गए, मैं एक हेड ड्रेसर हाँ, ते जहाँ फिर टेलर मास्टर हो गए, जहाँ
1: जी
0: जो कोई भी जिन्हों अच्छा लगता है रेडियो, वो हमेशा मेरे ख्याल रेडियो ही सुनते ने
1: जी
0: और टीवी
1: बिल्कुल।
0: घट ही देखते दे होने।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: हाँ जी,
1: ते तुसी मैनू दसो, हॉबी की है तुहाडी?
0: बस रेडियो सुनना और मिमिक्री करना।
1: मिमिक्री करना? अब वाह, आज के दिन मिमिक्री करके सुनाओगे फिर?
0: शायद तुसी सुनी भी होएगी, ज्यादातर मैं धर्मेंद्र जी की आवाज निकालता हूं ना,
1: अच्छा जी।
0: और क्योंकि वो इस फानी दुनिया विचों चले गए ने,
1: जी
0: और हमेशा मेरे ख्याल सारे दे फेवरेट ने
1: जी बिल्कुल,
0: वो
1: सारे
0: जो
1: दे दिलां
0: एज ए
1: च
0: पंजाबी।
1: जिंदा ने हो, उन्हां दियां
0: हाँ जी
1: फिल्मां, उन्हां दी अदाकारी दे नाल हो, सारे दे दिलां च जिंदा ने
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और
1: जी।
0: कहते ना, अगर मतलब सपोज करो तो कोई आरजे कहता है भी डायलॉग, चलो ए मेहनत करनी बहुत जरूरी है, अगर तुसी सेम टू सेम आवाज कर दे फिर वो थोड़ा जहा फर्क पै जाता हों, बाकी मेहनत करनी बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी
0: क्योंकि
1: है जी,
0: मैं
1: बहुत
0: मेहनत की
1: जरूरी।
0: और मैंने फल मिले परमात्मा की कृपा नाल। शोले फिल्म का डायलॉग है, एक क्लाइमैक्स डायलॉग है, धर्मेंद्र जी बोलते ने, नहीं जय तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, जय जिन लोगों ने तुम्हारा खून बहाया है, मकसम एक एक को चुन चुन के मरूंगा, चुन चुन के। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं, वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से, तुझको मैं नहला दूंगा तेरे ही खून से।
1: क्या बात है, मैनू ऐदा लग रहा है जिवें वाकई मैं शोले फिल्म देख रही हूँ तो धर्मिंदर जी नू सुन रही हूँ।
0: बस यही
1: क्या
0: एक
1: ही बात
0: निवेदा
1: है,
0: जी, एक मेहनत
1: बिल्कुल
0: जो कि हर एक इंसान, कोई भी इंसान आ, क्योंकि गलता परमात्मा ने सब नु इको ही बख्शा
1: जी
0: होया है,
1: बिल्कुल। मेहनत
0: बट उस
1: सब दी
0: विच
1: वक्री
0: मेहनत
1: वक्री।
0: बहुत ही
1: हाँ
0: जरूरी है।
1: जी, बहुत सोहणी तुसी अदाकारी कीती है। ते तुसी जदों बोल रहे सी, मन कर रहे सी कि ए चलदा ही जाए चलदा ही जाए, तुसी चुप कर गए तां मैं एकदम वो हो गई कि हुण मैनू बोलना पैणा, मैं तो थोनू सुन रही सी, है ना, कि ए खत्म हो गया डायलॉग,
0: हाँ
1: मतलब
0: जी, वो
1: तुहाडे
0: एक
1: वैन दे विच
0: डायलॉग,
1: बह रहे सी असी।
0: हाँ जी बिल्कुल, एक डायलॉग बस इन्ना सीगा। और डायलॉग्स तो बहुत ने उन्हां दी आवाज विच, बहुत ने डायलॉग्स, बट और विच एक और एक डायलॉग सीगा मैं तुहानू सुनाना, प्रतिज्ञा मूवी दा डायलॉग है।
1: जी
0: और अजीत अजीत साहब कहंदे ने, ओ धर्मिंदर साहब उपर एक पत्थर दे उपर खड़े होते हुए होंदे ने, और अजीत साहब नीचे होंदे ने, वो फिर सोचदे आ भी, क्योंकि उहनां दे डबल रोल सी ना धर्मिंदर जी दा फिल्म
1: जी
0: विच,
1: जी
0: ते उहनां नू पहले उहनां दे पिता जी नू खलास किया जाता, मारे मार दिता जाता, ते फिर उहनां दे बेटे अपने अपने डैडी दी मौत दा बदला लेंदे ने। वो किस तरह बोलते ने जदों अजीत साहब को सोचते ने, मैंने कहीं तुम्हें देखा है, वो फिर धर्मेंद्र साहब की बोल रहे, हाँ भरत उसी खून का आखिरी कतरा हूं मैं जिसे तुमने जिंदा छोड़ दिया था, मैं कसम आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी का डायलॉग बना था।
1: क्या बात है, मतलब आज तक तुसी सबनों ना वो पुराने समय दे विच लै गए हो।
0: हाँ जी
1: सच
0: बिल्कुल
1: विच
0: बिल्कुल,
1: ही,
0: बहुत बहुत
1: सच्ची
0: शुक्रिया
1: मुच्ची
0: जी
1: ऐदा लग
0: तुहाडा,
1: रहा कि जिवें असीं वाकई धर्मिंदर जी नूं, है ना, सुन रहे हैं अपने कन्नां दे नाल।
0: बहुत मेहरबानी, बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: खूब,
0: इन्ना
1: बहुत
0: एप्रिशिएट
1: खूब,
0: करने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर कॉल करन दे लई। ते मैनू गीत दसो, तुसी केड़ा सुनना?
0: हाँ जी निवेदा जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, हर बार की तरह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश कर दियो, और तुसी गाना प्ले कर दियो गुरदास मान साहब जी आवाज विच, पहला सेहत जरूरी है।
1: क्या बात है जी, जरूर, सेहत वाकई ही सब तो पहला जरूरी है। ते जरूर प्ले करांगे ये गीत, थैंक यू सो मच कॉल करन दे लई। सो गीत असी जरूर प्ले करांगे, पर उस तो पहला एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का दे विच पहुंचे ने अगले कॉलर, स्पेशल वाला तड़का लगाने लई। गल करते हैं ना दे नाल। हेलो,
1: हेलो, फरमाइश।
0: नमस्कार, कौन बोल
1: पंजाबी
0: रही ने?
1: तड़का में, पंजाबी तड़का में मैडम जी आपका स्वागत है। शीश कल्याणी दिलकुशा माँ की जलंधर,
0: थैंक यू सो मच
1: और ऐसा
0: जी,
1: अपने
0: ते
1: दोस्तों
0: बहुत
1: के दिल
0: बहुत
1: के
0: स्वागत है
1: अंदर।
0: जी प्रोग्राम दे विच।
1: शुक्रिया मैडम जी, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जय माता दी कहने जी।
0: जय माता दी। ते
1: अच्छा,
0: फिर आजकल गर्मी गर्मी बहुत हो गई है, ते फिर
1: मैडम
0: ठंडा
1: तो आदत
0: ठंडा चल रहा
1: बारिश
0: है।
1: हो रही है,
0: हाँ,
1: आदत ठंड लग रही जी।
0: तन ठंड लग रही है क्यों? तुसी कितने होर बैठे हो?
1: मैं हिमाचल से। हाँ
0: अच्छा, ठीक है ठीक है, तुसी हिमाचल पहुंचे हुए हो। हाँ,
1: जी, हाँ जी,
0: पंजाब दे लोग हिमाचल पहुंच के सानू फोन कर रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: ठीक है जी, हिमाचल च मौसम किदा?
1: बहुत वधिया जी, ठंडी ठंडी आवाज आ रही है। हाँ
0: ठीक है ठीक है,
1: जी,
0: चलो।
1: कल मैच देखने आए जी, तो फिर इतने रोके जी।
0: अच्छा ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी, हाँ,
0: चलो बहुत बढ़िया। ते
1: बस आन
0: फिर
1: लगे वापस, फिर तो आवाज सुनी, तो मैं कहा चलो आज पहाड़ी इलाके जी ला के देखिए जी, लाग गया फोन, तो
0: क्या बात है,
1: बहुत
0: तुसी
1: खुशी
0: है
1: हुई।
0: ना, सानू जड़े सुन रहे ने, ते मैनू भी नाल, सारे हिमाचल लै गए हो, असी इमेजिन कर लिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, बाकी मैडम गर्मी सर्दी कहते कभी हाँ है, कभी ना है, कभी धूप है, कभी छाया है, ये तो
0: जी
1: संसार है
0: बिल्कुल
1: जी, चलना
0: बिल्कुल,
1: ही रहना
0: ये
1: है,
0: तो
1: तो
0: ऐदा ही चलते रहना है।
1: चिंता नहीं करनी चाहिए।
0: हाँ, नहीं,
1: हर मुश्किल का सामना करो, हंस के करो, खुश
0: जी
1: होके करो।
0: बिल्कुल, असी बिल्कुल नहीं चिंता कर रहे, बस थोड़ी जी एहतियात वरतनी होंदी है कि गर्मी आ गई है,
1: हाँ
0: ते हुण पानी
1: बिल्कुल,
0: पुणी दा ध्यान रखो, पींदे रहो, अपने आप नूं हाइड्रेट रखो, है ना?
1: पानी मैडम पानी बचाना भी चाहिए था।
0: हाँ,
1: मैं
0: बचावांगे
1: हफ्ते,
0: तो ताई पीवांगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते एक बारी नालो पानी दी बचत करो।
0: नहीं, तुसी
1: बिल्कुल
0: गर्मियां दे विच ऐदां दा टिप ना दिओ कि एक दिन ना लो, ये गलत हो जाना।
1: जी, चलो रोज ला लो कोई पानी, मतलब ऐसा ना बाल्टी भर लो, तुसी कहनी भी
0: हाँ
1: टूटी गोली छाड़ दो,
0: जी बिल्कुल
1: एक पानी
0: बिल्कुल।
1: चलदा, एक बाल्टी भर लो, उतना ही ना लो, गड्डी धोने आ तो तुसी छोटी
0: जी
1: जी बाल्टी
0: जी
1: भर लो, उतना गड्डी धो लो, गर्मियां
0: पानी दी
1: थोड़ी
0: बचत
1: मुश्किल आती
0: करनी
1: जी।
0: बहुत जरूरी है, जे
1: हाँ,
0: पानी
1: बाकी मैडम जो
0: बचावांगे ते
1: रोड
0: वरत
1: है ना,
0: सकांगे।
1: अजकल रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं,
0: हाँ बिल्कुल, रोड एक्सीडेंट,
1: एदा थोड़ा जा सानूं जरूर ख्याल रखना चाहिए है,
0: जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: रोड दे उपर असीं जदों भी चलते हैं, पहले तो एक तरह तुसीं जाना है, जिदा मैडम तुसीं वक्त तो पहला पहुंच जाते हो ना रेडियो च
0: जी
1: अपनी ड्यूटी से, कभी तुसीं क्या मैडम है रस्ते ट्रैफिक, मैं कहूँ मैडम जी हैलो, तुसीं कहो यार ट्रैफिक बहुत है, मैं तो रस्ते जाना।
0: हाँ बिल्कुल
1: मैं लगता है
0: बिल्कुल।
1: कि मैंने 60-70 साल हो गए सुनते, मैं आज तक कभी नहीं सुनया कि मैडम ने कहा भाई मैं रस्ते बड़ी ट्रैफिक है जी, मैं नहीं नहीं आ रही, आ रही है जी,
0: जी
1: इंतजार करो,
0: जी
1: कभी
0: जी
1: होया
0: जी
1: नहीं ना मैडम आज तक
0: नहीं
1: ऐसा।
0: नहीं नहीं है, हो भी नहीं सकता ना।
1: हाँ, तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा, तुम जो भी करो चलते हो, आधा घंटा पहले निकलो जे तुम दूर जा रहे हो,
0: बिल्कुल, हाँ, अपना
1: ताकि
0: मार्जिन
1: रस्ते,
0: लेके
1: हाँ
0: चलो, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल,
0: तुसी
1: ताकि
0: टाइम
1: रस्ते
0: ते
1: निकल
0: निकलते
1: पाए।
0: हो ते मुसीबत कईयां होरां नूं पै जाती है, जदों
1: हाँ बिल्कुल
0: अन्नेवा
1: दूसरे
0: असीं
1: बंदे नूं
0: गड्डी
1: मुसीबत
0: चलाने
1: आई
0: हाँ,
1: जी जी,
0: ते कईयां होरां नूं असीं मुसीबत दे विच पा दिन्ने आ, अपने
1: क्योंकि
0: आप
1: मैडम
0: नूं तां
1: जदों
0: जोखम च
1: मोबाइल,
0: पाने ही
1: हाँ
0: हाँ।
1: बिल्कुल, जदों मोबाइल तुहाडे रस्ते कोई फोन आ जांदा है, ते उदों तुसीं गड्डी अपनी सैड ते ला के भी सुन सकदे हां असीं,
0: जी बिल्कुल,
1: और जदों किते मोड़ आंदा ते एकदम मोड़ ना कटो, पिछे
0: हाँ,
1: देखदे नहीं असीं,
0: जे
1: और
0: जान है
1: पहले
0: तां
1: अग्गे चलदे
0: जहान है,
1: सुना।
0: बिल्कुल, छोटियां
1: बिल्कुल
0: छोटियां
1: बिल्कुल,
0: हैं गैलियां असी करदे हाँ, जदों घरों बाहर निकल आने हैं, ते अपनी जायदाद समझ के जिदा मर्जी असी चलाने हैं,
1: हाँ
0: दौड़ाने हाँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: ते
1: और
0: है ना?
1: रस्ते चलते मैडम रस्ते को चीज खाने आते हैं, सड़क ते ना सुटो जी, ये भी ख्याल रखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: गड्डी से कई बार चिप्स वगैरह कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं,
0: जी।
1: तो बोतल सड़क पे छोड़ देने पीछे।

0: एंटरटेनमेंट द डोज तो मिलता ही मिलता है ना।
1: जी जी
0: चल थैंक यू सो मच, थैंक यू कॉल करने दे
1: बहुत
0: ले।
1: बहुत बहुत बहुत
0: धनबाद
1: धन्यवाद जी, तुम्हारा।
0: धनबाद जी। ते गीत दी फरमाइश हुई है जी, सौन दी चढ़ी जरूर लगावांगे, पर छोटी जी ब्रेक तो बाद।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है होम स्वीट होम। तो होम स्वीट होम दे विच आज निवेदिता रहेगी तुहाडे नाल। सो अपने घर नू बहुत सोहना बनाने दे लई, अपनी सेहत नू बहुत चंगा सेहतयाब अपने आप नू रखने दे लई, ते होर भी बहुत सारिया गल्लां बातों का भंडार लेके पहुँच गई हाँ जी मैं प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच। सो तुसी भी बने रहना है मेरे नाल, क्योंकि इनफॉर्मेशन जो लैके आई हाँ वो तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद होने वाली है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जी पहले गीत के नाल, मैं प्ले कर जा रही हाँ तो तुसी फटाफट रेडी हो जाओ कि कितने इनफॉर्मेशन तुसी नोट डाउन करनी है। कॉपी पेन फटाफट चुक लियाओ, जिते भी नोट डाउन करना है समान चुक लियाओ। तद तक मैं प्ले कर जा रही हाँ थोड़े लिए गीत, वापिस आओ फिर आप जानकारियाँ की जी पिटारी है वनू खोलते हैं तो गलों बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।

प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम। ते दोस्तों होम स्वीट होम दे विच शुरुआत करांगे अपने आप तो जी। अपने आप तो मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जेकर असी अपनी सेहत का ध्यान रखांगे ते ता ही ता घर परिवार आले दुआले ते समाज का ध्यान रखा जाएगा ना। सो अपने आप तो शुरुआत कर दें। अपने आप तो शुरुआत ते दिन की शुरुआत किदा करनी है दोस्तों। आजकल का मौसम गर्मी वाला है ते अक्सर ना मतलब निटाली जी आई रहती, आलस छाया रहा है, बाहर जाने मन नहीं करता। तो ऐसे तो अजिहे समय के ना सानू होंदा कि कोई एनर्जी वाली चीज़ मिल जाए, एनर्जी ड्रिंक मिल जाए या कुछ ऐसा खाया जाए जिस दे नाल पूरा दिन एनर्जी बनी रहे। सो मैं तुहानूं उही चीज़ां दसन जा रही हाँ कि जिदे नाल तुसी किवें अपनी बॉडी नूं हमेशा एनर्जेटिक ते एक्टिव रख सकते हो। सो दिन की शुरुआत किदा करनी है जी, एक गिलास गर्म पानी नाल, कोसे पानी दे नाल।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच अज असी गल बात कर रहे हां कि गर्मियां दे विच अपने आप नू किवें राहत असी देनी है, किवें गर्मी तो बच के रहना है। सो दिन दी शुरुआत किता करनी है, केड़ा असी ब्रेकफास्ट कर सकते हां, किवें अपनी बॉडी नू एक्टिव रखना है, उसी गल बात कर चुके हां, पर हुन वारी है कि इस तो अलावा भी कुछ करना है। उहदे लई की है जी, घर दे कमरे विच ना मोटे पर्दे लगाओ, बांस दीआं चिक्कां लगा सकते हो तां कि धुप अंदर ना आए। धुप अंदर नहीं आएगी तो घर ठंडा रहेगा। सो तुसी मोटे पर्दे या बांस दीआं चिक्कां लगाओ तो उहदे नाल घर तुहाडा ठंडा ठंडा रहेगा। तो सवेरे ते शामी जदों सूरज नहीं हुंदा, ठंडका जिहा हुंदा, उस टाइम दरवाजे खिड़कियां खोल दिओ तां कि ठंडी ठंडी हवा अंदर आवे, तो उहदे नाल वी साडा घर है जिहड़ा ठंडा रहेगा। तो एक होर देसी जुगाड़ हैगा, वह देसी जुगाड़ यह है कि पखे के सामने बर्फ़ या ठंडे पानी वाला बर्तन रख दो, ये नाल भी कमरा कुछ देर ठंडा रहता है, तो ठंडी ठंडी हवा आती है। सो इस तो अलावा एयर कूलर जो तुम यूज़ कर रहे हो, उस हमेशा साफ तो ठंडा पानी वरतो, और उसके घा या जो पैड है उन्होंने समय समय से साफ करते रहो, जेकर चेंज करन वाला है तो उन्होंने चेंज भी किया जाए। और एसी का टेंपरेचर बहुत ज़्यादा कट नहीं कर लेना, असी 24-26 दे करीब रखो, 24-26 दे करीब रखोगे उहदे नाल कमरे विच भी ठंडक रहेगी ते बिजली भी बचदी है। ते एसी वाले कमरे तो तुरंत असी तिखी धुप्प दे विच नहीं जाना, कुछ समा अपने आप नू नॉर्मल टेंपरेचर दे विच रखो, ते फिर तिखी धुप्प तो ठंडे जगह दे विच, ठंडी जगह तो तिखी धुप्प दे विच असी आना, एकदम असी जिहड़ा टेंपरेचर है वह अप डाउन नहीं करना। और कोशिश करो कि कॉटन दे कपड़े ही पाए जान और ढिले कपड़े पाए जान, ता कि शरीर दे विचों हवा दा हवा लंघदी रहे, कपड़िया दे विचों हवा दा निकास हुंदा रहे, ते सानू गर्मी दा एहसास थोड़ा घट आवे। जेकर चक्कर आंदे ने, बहुत पसीना आ रहा है, ते शरीर गर्म गर्म लगन लग पिया, ते जनाब तुरंत छां दे विच बैठ जाओ, ठंडी जगह बैठ जाओ, ते पानी पियो, ORS पियो, ते फिर अपने काम ते लगो। एकदम असी जेकर गर्मी लगती है तो अपने काम नू छड़ देना चाहिए, थोड़ी जी रेस्ट करके पानी पूनी पी के फिर तो सानू अपने काम ते लगना चाहिए। सो होम स्वीट होम दे विच गल्लां बातां दा सिलसिला जारी है, ते नाल नाल असी प्रोग्राम दे विच तुहाडे लई गीत भी प्ले कर रहे हैं। सो हुण एंजॉय करते हैं जी ये गीत।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: तो स्वागत है जी प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच। ते दोस्तों होम स्वीट होम होर भी सोहना लगता है जेकर असी बागबानी दा शौक रखते हुए घर दे विच सोहने सोहने पौधे होन, बगीची सजाई होवे, जेकर छोटा जिहा गार्डन बनाया होवे जां किचन गार्डन बनाया होवे, फिर तां क्या ही कहने, है ना। घर दे विच ही सानू बहुत सारियां चीज़ां मिल जांदियां ने जिहड़ियां असी किचन विच वरत सकदे हां। ते उस तों अलावा बहुत वधिया यह हॉबी भी है जेकर असी बागबानी ते टाइम स्पेंड करते हाँ। किचन गार्डन असी बनाया होया तो ये सानू बहुत सारे शरीरक भी फायदे होंगे है, मानसिक भी फायदे होंगे है, तो साड़ी जिहड़ी बॉडी है हर टाइम चुस्त दुरुस्त रहती है। तो किहड़े-किहड़े पौधे ने जेकर असी घर लगाने हाँ तो सानू फायदे की होणगे उहदे बारे असी गल करते हाँ। दोस्तों सब तो पहला तो तुलसी, तुलसी का पौधा वैसे तो तकरीबन हर घर विच हुंदा है, जेकर किसी ने नहीं भी लगाया तो लगाओ, जरूर लगाओ, क्योंकि तुलसी जुकाम खांसी ते इम्यूनिटी वधाउण दे विच बहुत ही लाभकारी है। सानू बहुत फायदे हुंदे है तुलसी दे। एलोवेरा लगा सकते हो, एलोवेरा दे नाल चमड़ी दी संभाल बहुत असी इहदे विच काफ़ी असी चीज़ां बना सकते हैं। एलोवेरा जैल दे नाल जिहदे नाल

0: क्यों है मां? कुछ नहीं पता।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम ते विच दोस्तों अच्छे से गर्मी नू दूर पजान दिया गल्लां कर रहे हैं क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी हुई है ते अगों अगों टेंपरेचर होर ज़्यादा वधना ही है। सो गर्मी नू दूर करन दे लई ही अज असीं गलबात करांगे क्योंकि हुण सब तो ज़्यादा सानू टेंशन इस चीज़ की है कि किवें अपने आप नू असीं ठंडा रखना है और किवें असीं तरोताज़ा रहना और किवें अपनी सेहत का ध्यान रखना। सो दोस्तों गल ये है कि जिहड़े सीजनल फ्रूट होंदे आ जिवें कि तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी संतरा यह जरूर खाओ क्योंकि ये पानी वाले फ्रूट्स ने ते इहदे नाल तुहाडे अंदर कदी भी पानी की कमी नहीं रहिंदी जेकर तुसीं ये फ्रूट्स खाते हो। और इस तो अलावा नींबू पानी लस्सी छाछ नारियल पानी शिकंजवी इन्हां नूं अपनी रूटीन दे विच जरूर जरूर जरूर शामिल करो जेकर तुसीं गर्मी नूं दूर दूर तक रखना चाहते हो। और इस तो अलावा जेकर तुहानू प्यास ना भी लगे तो साधारण पानी है जड़ा वो पींदे रहना चाहिए। असी वेट नहीं करनी कि जदों प्यास लगेगी उदों ही पानी पीना, नहीं, उस तो अलावा भी सिप सिप करके सानू पानी पींदे रहना चाहिए। तो जेकर घरों बाहर निकलना तो कोई शर्म नहीं करनी कि हो मैं अपने आप को किवें कज के निकला किवें किदा लगेगा। तुसी सिर ते टोपी या छतरी नाल लैके निकलो तो बहुत वधिया क्योंकि अपने आप को गर्मी तो बचाना यह साडी ही जिम्मेवारी है और कोई भी सानू पॉइंट आउट नहीं करेगा क्योंकि गर्मी दे विच सब ने ही बाहर निकलना होंदा है तो सारे ही अपने आप को कवर करके निकलते। जे कोई करता भी है पॉइंट आउट तो जस्ट इग्नोर क्योंकि असी अपनी सेहत का आप ध्यान रखना। जेकर कोई कुछ कहता है तो कही जाए और कहेगा नहीं क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर टोपियां बहुत अच्छे अच्छे मफलर और बहुत ब्यूटीफुल साढ़े को अम्ब्रेलास है ने उन्होंने वरतो और तुसी अपने आप को अपडेटेड भी शो कर सकते हो। एक गल होर कि ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना क्योंकि इहदे नाल तुहानू गर्मी ज़्यादा लगनी है और कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं पीनी। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगे एक बारी तो लगता है कि हाँ ठंडक जी पै गई पर यह साढ़े शरीर नू डिहाइड्रेट कर देता है। चाह भी कॉफ़ी भी तो कोल्ड ड्रिंक भी ये ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये नाल शरीर नू डिहाइड्रेट हो शरीर साढ़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। और कोशिश करो कि 12 बजे तो लैके 4 बजे तक का जो टाइम होंगे इस दौरान घर तो बाहर ना निकलिया जाए क्योंकि तिखी धुप होंगी है और साढ़े शरीर नू खराब करती है। ठंड के वेले ही या सवेर के समय या शाम के टाइम पर ही असी बाहर निकलीए ताकि ठंडी ठंडी हवा के विच साढ़े काम निपट जान असी वेले हो जाइए काम करके। सो कोशिश करो सवेरे सवेरे काम नबेड़ो जेकर जेकर कोई रह गए ने तो शाम नू किते जान 12 से 4 बजे तक का जिहड़ा टाइम है वह असी इनडोर ही रहिए। सो होम स्वीट होम प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो जी ते मैं थोड़े लिए प्ले करन जा रही हाँ सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर जी की आवाज़ के विच प्यारा जगीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। दे दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है मिड डे मेलोडीज। मिड डे मेलोडीज दे विच निवेदिता दा रहेगा तुहाडे नाल साथ ठीक 2 बजे तक। दोस्तों जदों भी 70 दे दहाके की गल होंदी है, 70 दे दहाके दे रोमांस की गल, या कॉलेज दे दिनां दी ओ आशिकी की गल, या ऋषि कपूर की चॉकलेटी इमेज की गल होंदी है, तां एक आवाज़ खुद ब खुद साडे कन्नां विच गूंजण लगती है। तो वो आवाज़ है बहुत खास, बेहद ताज़ा, शैलेंद्र सिंह जी की। तो दोस्तों अज दी पूरी दोपहर, अज दा पूरा प्रोग्राम असी नाम कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी दे उन्हां गीतां दे जिन्हां ने हर दिल दे विच प्यार दा बूटा लगाया। तो सब तो पहला सुनते हैं वो गीत जिसने रातों रात उन्हां नूं स्टार बना दिता सी, फिल्म बॉबी तो। गीत सुनो ते गुनगुनाओ, मैं शायर तो नहीं।

वाह जी वाह, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। सो दोस्तों, लिखन वाले ने आनंद बख्शी साहब, ते संगीत दिता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, ते शैलेंद्र सिंह जी की प्यारी जी आवाज़। तो दोस्तों, शैलेंद्र सिंह जी आवाज़ दे विच वो मासूमियत सी जिसने इस गीत नू अमर कर दिता। उन्हां दी आवाज़ दी सब तो वड्डी खूबी सी उस विच मौजूद यूथफुल एनर्जी। ते जदों भी वह गाते सन तो लगता सी जिवें कॉलेज का कोई लड़का गिटार हाथ विच फड़ के अपने दिल का हाल सुना रहा होवे। ते चलो, अगला गीत भी कुछ अजिहा ही है जो अज भी सुन के साडे पैर थिरकण लग पैंदे ने। ते फिल्म खेल खेल खेल खेल में तो ये सुपरहिट रोमांटिक ट्रैक शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ दे विच।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੱਖੀਓ ਕੇ ਜਰੋਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ

जलंधर सिंह ने मिलके गाया सी। सो अपने यारा दोस्तां नूं याद करो ते सुनो ए जबरदस्त गीत ए यार, सुन यारी तेरी, एंजॉय करो ए गीत ते वापिस आओ।

0: ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ। ਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम, तुम।
1: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ते हुण तुसी सुनोगे खबरां पंजाबी विच।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशां दे दौरे दे चौथे पड़ाव ते अज नॉर्वे दे ओस्लो पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम ते दक्षिणी कोरिया दे दौरे ते रवाना। केरल विच सीनियर कांग्रेसी नेता ने अज केरल विच मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। पंजाब विच 26 मई नूं होण वाली नगर निगम चोणां लई 10,809 उम्मीदवारां दे नामजदगी पत्र दाखिल कीते। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। आईपीएल क्रिकेट में अज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल होगा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 5 देशों के दौरे के चौथे पड़ाव च नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए ने। इस दौरे च भारत ते नॉर्वे दरम्यान दवली गलबात तीजा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੌਰਵੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰਲ 5ਵੇਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਨਾਸ ਗਾਰ ਸਟੋਰੇ ਨਾਲ ਤਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੌਰਵੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੌਰਡਿਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ 5 ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਰੱਖਿਆ, ਆਪਟਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੇ ਕਈ

शामिल ने। इस तो पहला श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया कि उन्होंने स्वीडन यात्रा दौरान कई अहम नतीजे सामने आए जो दवल्ले संबंधों में नवी गति लियाउणगे। उन्होंने कहा कि अपने दवल्ले संबंधों में एक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण, संयुक्त नवीनता भाईवाली 2.0 ते भारत स्वीडन तकनोलॉजी ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस कोरीडोर की शुरुआत करन तो लैके अगले 5 सालां विच दवल्ले व्यापार नूं दुगणा करन दे इक उद्देश पूर्ण टीचा तय करन तक चर्चावां बेहद लाभकारी रहियां। उन्होंने स्वीडन के लोगों, स्वीडन की सरकार अते प्रधानमंत्री ओलफ क्रिस्टरसन का उन्होंने निघ अते दोस्ती लई धन्नवाद किया। प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा नूं कवर करन वाले साडे पत्रकार ने खबर दित्ती है कि दवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली के पद्धर तक उच्चा चुकना भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-30 राही हो सकिया है। व्यापक खाके का उद्देश अगले 5 साल के अंदर दवल्ले आर्थिक वटांदरे नूं दुगना करना, मेक इन इंडिया ते मेड विद स्वीडन पहलकदमियां तहत सहयोग नूं डूंगा करना है, खास करके चुगिरदे पक्खी हाइड्रोजन, सैमीकंडक्टर ते आधुनिक निर्माण वर्गे खेतरां विच। इस दौरे का एक महत्वपूर्ण पल प्रधानमंत्री नूं रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया जाना सी, जो कि विदेशी सरकारां दे मुखियां लई स्वीडन का सब तो वड्डा सन्मान है ते दोवां देशां विचकार डूंघे हो रहे सभ्याचारक ते लोकतंत्री संबंधां दा प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम अते दक्षिणी कोरिया के दो देशों के दौरे ते रवाना होए। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि यह दौरा दोवां देशों नाल देश के संबंधों के दायरे नूं होर वधाएगा। उन्होंने कहा कि यह दौरा रणनीतिक फौजी सहयोग नूं डूंघा करन, रक्षा सनअती भाईवाली नूं मजबूत करन अते हिंद प्रशांत खेतर विच समुद्री सहयोग नूं वधाउण ते केंद्रित होएगा। वियतनाम की अपनी यात्रा दौरान राजनाथ सिंह वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फॉन वेन जियांग नाल दवल्ली गलबात करनगे। श्री सिंह का यह दौरा 19 मई नूं वियतनाम के साबका राष्ट्रपति हो ची मिन की 136वीं जन्म वरेगंढ मौके भी हो रहा है। केरलम विच सीनियर कांग्रेसी नेता वी डी सतीशन की अगुवाई वाले नवे यूडीएफ मंत्रीमंडल नूं तिरुवनंतपुरम विच सहुं चुकाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने नवे मंत्रियों नूं सहुं चुकाई। साबका विरोधी धिर नेता अते केपीसीसी दे साबका प्रधान रमेश चेनीथला, मौजूदा केपीसीसी प्रधान सन्नी जोजफ, केपीसीसी दे साबका प्रधान के मुरलीधरन अते आईयूएमएल नेता पी के कुनहाली कुट्टी नवे मंत्रीमंडल विच सीनियर नेतावां विचों इक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन नूं केरलम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकण ते वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लोकां दीआं आसां उम्मीदां नूं पूरा करन विच नवीं बणी केरलम सरकार नूं हर संभव सहायता दा भरोसा देगी। पंजाब विच 26 मई नूं होण वालियां नगर निगम चोणां तों पहलां 10,809 उम्मीदवारां ने नामजदगी पत्र दाखल कीते ने। शनिचरवार नामजदगियां दाखिल करन दा आखिरी दिन सी। ये चोणां 8 नगर निगमां समेत 105 स्थानक संस्थावां लई होणगियां। राज चोण कमिशन मुताबिक 8 नगर निगमां लई 2,154 उम्मीदवारां ने नामजदगियां दाखिल कीतियां ने। 76 नगर कौंसलां लई 7,334 अते 21 नगर पंचायतां लई 1,321 नामजदगियां दाखिल कीतियां गईयां ने। नामजदगी पत्रा की पड़ताल अज होएगी, जदों की नामजदगियां वापस लैण की आखिरी तरीक भलके 19 मई तय की गई है। नतीजे 29 मई नूं ऐलाने जाणगे। कमिशन ने चोणां नूं निरपक्ष, सुतंत्र अते शांतिपूर्ण ढंग नाल कराउण लई सारे प्रबंध कीते ने। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNews जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में अज सवेरे एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय वापरिया जो एक ट्रक की सामने तो आ रही एक वैन नाल टक्कर हो गई। वैन में 2 औरतों समेत 10 लोग सवार सन। यह हादसा जिला सदर मुकाम तो 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती शारा ते अदलिसपुर पिंड नेड़े वापरिया। पुलिस मौके ते पहुंची ते जख्मियों नूं नेड़ेले हस्पताल विच दाखिल करवाया। हादसे तो बाद ट्रक का ड्राइवर फरार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी विच होए सड़क हादसे विच होए जानी नुकसान ते दुख प्रगट किया है।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

त्याच्या आणखी गृहमंत्री अमित शाह ने अज रायपुर 112 हंगामी सेवा लई 409 अत्याधुनिक वाहनों हरी झंडी दिखा के रवाना किया। यह सहूलत पहला छत्तीसगढ़ के 16 जिले में उपलब्ध सी पर हुण 33 जिले में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई, विधानसभा स्पीकर डॉ रमन सिंह ते उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस मौके पर मौजूद सन। समागम तो बाद गृहमंत्री बस्तर लई रवाना होए, जिथे ओ नेतानार पिंड विच CRPF कैंप विच कायम एक जनतक सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। एक केंद्र दूर दुराडे दे इलाकों विच रहण वाले लोगों नूं सरकारी ते डिजिटल सेवावां तक आसान पहुँच प्रदान करेगा। श्री शाह अज जगदलपुर पहुँचणगे ते अमर वाटिका विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने सबका प्रधान एचडी देवेगौड़ा नूं जन्मदिन दीआं वधाईआं दित्तीआं ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे जीवन तक जीवन विच देश लई शानदार योगदान पाया है। उन्होंने कहा कि सबका प्रधानमंत्री नीति नाल संबंधित मुद्दों की डूंगी समझ के हाशियागत लोगों की सेवा प्रति जनून लई जाने जाते हैं। श्री मोदी ने उन्होंने लंबी ते सेहतमंद जिंदगी की कामना की। गृहमंत्री ने एचडी देवेगौड़ा नूं सही अर्थां विच धरती दा सपूत कहा। केंद्रीय बंदरगाहां जहाजरानी ते जलमार्ग मंत्री सरबनंद सोनोवाल ने अज औरतां दे अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिवस ते औरत नाविका दे अजित साहस नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारां दे कारण भारत विच औरत नाविका दी गिणती लगातार वध रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि हफ्ते के कई दिनों दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के मध्य भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर तो लैके गंभीर गर्मी दथितियां रहने की संभावना है। मौसम विभाग मुताबिक शनिचरवार तक उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ते राजस्थान में भी इसी तरह दथितियां रहनगियां। IPL क्रिकेट में हैदराबाद के MH चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 बजे खेडिया जाएगा। आखिर विच बुलेटिन दियां खास खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के चौथे पड़ाव ते अज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम ते दक्षिणी कोरिया के दौरे से रवाना हुए। पंजाब में 26 मई को होने वाले नगर निगम चोणों लई 10,809 उम्मीदवार के नामजदगी पत्र दाखिल किए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। IPL क्रिकेट में अज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल होएगा। इस नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होएगा। नमस्कार।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मेटे मेलेडीज़। तो दोस्तों आज दी दोपहर आज का प्रोग्राम तो सचमुच यादा दे नाम ही रहा, पर वक्त दी सुई किसे लिए नहीं रुकती। तो हुण समा हो गया है तुहाडे तो आग्या लैण दा। ते अज मेटे मेलेडीज़ विच अज शैलेंद्र सिंह जी दे खूबसूरत सफ़र दियाँ सी कुछ झलकियाँ भी देखियाँ ते उन्हां दी सुरीली आवाज़ का आनंद भी माणिया। हुण मैं लैनी हाँ तुहाडे तों इजाजत। तुसी अपना बहुत ख्याल रखना है, हंसते वसते रहना है ते सुनते रहना है FM रेनबो। ते हुण प्रोग्राम दा लास्ट गीत तुहाडे रेडियो सेट ते।

वो कह रहे थे कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हाँ दोस्तों, जो दो ना असी कदी ना कदे थोड़ा मूड अच्छा होवे ना, वैसे तो हर वक्त मूड अच्छा रखो, पर कदी कदी ना चलो उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। कदी कदी मूड अच्छा होवे ना, तुसी ना पता की नोट करियो, तुसी रस्ते च जा रहे हो ते तुसी ना हर बंदे दी फेस देखना, तुसी देखे होंगे यार कि बहुत कई दे ना मतलब आईब्रोज चक्के होंगे, भरवट्टे चक्के होंगे, टेंशन वाला मूँह होंगे, ख्याल च खोए होंगे, ख्यालों में बहुत खोए थानू बंदे मिलूंगे, क्योंकि ना कहना मतलब अगर वो बाइक पर जा रहे हैं उन्होंने जड़ा ना मैंटली फोकस ना बाइक पर नहीं होगा, उन्होंने ध्यान कितने होर आ, बस उन्होंने ना एक आदत बन चुकी होंगी ना साड़ी, हमने प्रैक्टिस इन्नी हो जाती होंगी बाइक चला दी, कुछ भी आप काम करते हो ना तो साड़ा ध्यान ना मतलब उधर हो के ना अपना बाइक तो चलती रहती है, पर जो ध्यान असं ख्याल जे नवे नवे ख्याल खोए होंगे ना वो नवे नवे ख्याल से ना आप ज़्यादा ध्यान दे दें दोस्तों, तो तुम जरूर नोट करिए, बहुत ही मज़ा आता है। अगर तुम कभी ना ताे को म्यूजिक नहीं है, तुम बोर हो रहे हो, तुम बाजार ना तुम आ चीज़ टाइम पास कह सकते हो, तुम वो करके देखियो। वैल साढ़े स्रोत्या ने सूँ बहुत कुछ भेजा है, सब तो पहला लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार लिख रहे हैं कि भटक गए उन्होंने राहों के कि भटक गए उन्हां राहां दे विच जिहड़ा साडा जिहड़ी हाँ जिहड़ा साडा कोई मंजिल दा टिकाना नहीं सी, भटक गए उन्हां राहां दे विच जिहड़ा साडा कोई मंजिल दा टिकाना नहीं सी, लै गई जिंदगी उस राहां ते, लै गई जिंदगी उस राहां दे विच जिथे असी जाना ही नहीं सी, जिथे असी जाना ही नहीं सी। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आया पढ़ के, बहुत मज़ा आया जी। उतो साढ़े होर स्रोते लिख रहे हैं कि सत श्रीकाल देला शायर अवनीश जी बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे हैं कि नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, आए है, है। नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है, ना जाने क्या कशिश है चाहत में, ना जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजान ही हमारी जिंदगी का हकदार हो जाता है। ओए ओए, इतना बड़ी डूंगी जी गल करती कि मतलब असल च असी ना ये चीज़ा सोचते नहीं है कि पर कोई अनजान ही आंदा साडी जिंदगी नूं ऐ कर जांदा ते कि ज्यों ज्यों अपना बन जांदा दोस्तों पता ही नहीं लगता।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू। दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों प्रोग्राम चल रहे थे, साढ़े स्रोते भी सानू कि कुछ भेज रहे ने, एंड साढ़े प्यारे ने एक लिखा है कि किनिया सोहनिया तेरिया अखा, बस देखी जावा तेरिया अखा, सबर हलीमी सादगी झलके इन्हां चों, जद भी वेखा तेरिया अखा, बंद अखा तो भी तू दिसदा, फिर भी तू इसदा जद खुल गया अखा, बिन बोले आपा गल कर लिए एक दूजे नाल मिला के अखा, आजा मिलके गल्ला कर दे आं, आज नहीं ता कल कर दे आं, बोल के मेथों कुछ कह नहीं होना, तू पढ़ लिया पे मेरिया अखा। क्या बात है जी, क्या बात है यार। अमनदीप सिंह हथूर ने लिखा है, तहसील जगराओं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। तो इन्हें उम्मीद है कौड़ा जी अज का जरा टैलीकास्ट नहीं ब्रॉडकास्ट वधिया होएगा जी। धनबाद जी, बहुत बहुत धनबाद धनबाद धनबाद। उतवा साढ़े लिख रहे ने करनैल सिंह बट्टू जी की लिख रहे ने, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मिर्जा गालिब ने, अच्छा मिर्जा गालिब जी की भेजती, वाह जी क्या बात है। करनैल सिंह जी बट्टू ने भेजी, वाह जी वाह, बहुत सोहनी है जी, ये तो मजे आए तो पढ़ के। उत्पाद है साढ़े दोस्त, अच्छा की लिख रहे ने, मेरे फेवरेट हीरो आ गया है, हीरो मीन्स सुपरमैन नो, अच्छा आर जी हीरो, ओके। जिंदगी ने उससे एक चीज बहुत अच्छी से सिखाई है कि हर किसी को अपना समझ लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग तुम्हारे दर्द से नहीं तुम्हारे काम से मतलब रखते हैं। जब एक तुम उनके काम के हो तब तक तुम अच्छे हो, फिर चाहे तुम अंदर से टूट रहे हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर से यानी कि पहले से बात उसे बहुत बुरी लगती थी, पर अब वो समझ गया है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद का साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तब इंसान को ना खुद ही खुद को संभाल

0: संभालना पड़ता है। क्या बात है जी, ट्रू लाइन्स, यू नो इट्स ट्रू लाइन्स। तो वाह दो हो, क्या बात है, साढ़े तो आए ने हुन वड्डा चिट्ठा गिट्ठा पहुन पढ़ के दे लिख रहे ने आया ना, ना प्यार ना पढ़ दे। सी वैसे सारियां शायरियां सी प्यार नहीं पढ़ते, पर यार इसको भी प्यार ना पढ़ दे। मैं महिंदर दीपन पिंड रण जिला नागौर राजस्थान तो की लिख रहे ने, कहिंदे ने सर मैं थानू अपनी जिंदगी विच वापरियां घटनावां बारे कुछ लाइना भेज रहा हाँ जी। जरूर लिख रहे ने कि मैं दिन वेले अपने आप नू व्यस्त रखदा हाँ, पर जिवें ही रात पैंदी है मैं उस दीआं यादां विच डुब जांदा हाँ। सेम हियर, आई मीन दस साल भी इस दर्द नू घट नहीं कर सके, दस साल भी इस दर्द नू घट नहीं कर सके कि ओह चली गई है पर वह मैनू इकल्या रातां नाल छड गई। कम की पीड़ भड़के विचकार यह दिल दिन भर शांत रहिंदा है, कि कम की पीड़ भड़के विचकार यह दिल दिन भर शांत रहिंदा है। मैनू नहीं पता क्यों जिवें ही हनेरा पैंदा है जख्म फिर ताज़ा हो जाते हैं। दुनिया सोचती है कि मैं भूतकाल नू भुल गया हाँ, दुनिया सोचती है कि मैं भूतकाल नू भुल गया हाँ, पर मेरी रातां गवाह हैं कि मैं अजे भी उसनू हर पल याद करता हाँ। समा बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, अते साल भी बीत गए हैं। जो नहीं बदलिया है वह है रात दी इकलता अते मेरिया अखां विच यह हंजू। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है जी। उतवार आ रहे ने, गुड आफ्टरनून सर, गुरविंदर जोड़ा, परमजीत जोड़ा, अच्छा जी डॉक्टर रंजीत जोड़ा लिख रहे ने कि विहा के लेके आया है दी जेड़े कदर पौंदे ने, विहा के लेके आया दी जेड़े कदर पौंदे ने, दुख सुख विच मोढ़ा बन के नाल खड़ौंदे ने। ओ मर्द चंगी कुखो जमे हुंदे जेड़े औरत नू सिर्फ घरवाली नहीं सगो राजकुमारी बनाउंदे ने, सौरियां दा जो जाणू पहला सख्श बन दे, इज्जत देनी जेड़े फर्ज समझ दे, ओह मर्द ज्यादा ना ख्यौंदे ने, ओह औरताली सिर्फ हम सफर नहीं हुंदे सगो उना दे दिला च रब दा दर्जा पाउंदे ने। क्या बात है जी, बहुत सोहना लिखिया जी। दोस्तों तुसीं सुण रहे प्रोग्राम दिला शायर है, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश नवीं नवीं फरमाइशां आपां लैके आ रहे ने, बहुत सारियां गजलां साडे कोल ने, आपां बस ओह सुणदे हां। लै जी मैं आना जी जरूर, बस ए सुनो जी।
1: आज जाने

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों जदों प्रोग्राम दिला शायर होंदा ना एक ना सी मैं हमेशा कहना हुंदा कि ना एक माहौल ही लग जा बन जांदा ते माहौल नूं देखदे देखदे ना मद्देनज़र रखदे होए असी अपने सरोते दी गलबात नूं पढ़दे हां। लिखे मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा तों लिख रहे ने बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जश। अच्छा जी नाम भी नाल ले ले जी, ठीक है जी। लिख रहे ने कि इत्थे हर कोई चलाक है, तू सोच रहा है कि मैं ही चलाक हाँ, मेरे दिमाग ही है होशियार, सगो यह सोच के जिस नाल तू चलाकी कीती तेरे ते सी उसनू रब च ना इतहार इतवार। दोबारा पढ़ दें कि इत्थे हर कोई चलाक है, तू सोच रहा है कि मैं चलाक हाँ, मेरा दिमाग ही होए होशियार, सगो यह सोच के कि जिस नाल तू चलाकी कीती तेरे ते सी उसनू रब जिन्ना इतवार। उसने जे भरोसा ना किता हुंदा ना तेरी चलाकी चलदी ना तेरी होशियारी, तू तो उसदे भरोसे नू ही सट मारी, जसल दी तो सोच ही है कि अज तू करदा कल आउनी तेरी भी वारी है। क्या बात है जी जसल साहब, जवाब देता तुसी अज फिर। दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते जसल साहब जी दी आपां हुणी पोएट्री पढ़ी कहां लाइन्स पढ़िया ते जसल साहब साडे सरोते ने वैसे तां जो भेजदे रहिंदे ने। जसल साहब थोड़ी भावनावां नूं मैं समझ गया वैसे तां। आई होप तुसी हमेशा पॉजिटिव रहो ते खुश रहो दोस्तों, रब भली करे। उस तो बाद आंदे ने साडे होर सरोते, नमस्कार रमनीश सर जी, कृपा करके पूरी देनी पैंदी है पढ़ो जी। अच्छा कृपा कर करके पूरी देनी पैंदी है पढ़ो जी। भुपिंदर सिंह पिंड चिच्चा अमृतसर तो, डेडिकेटेड टू माई हार्टियस फ्रेंड। ओके जी, अपने दोस्त नूं डेडिकेट कर रहे ने जो असी पढ़न लगे ने। लिख रहे ने कि तू तिखड़ दोपहर ना करो निकली बार, सचमुच हुण अग वरदी है यार, तू तिखड़ दोपहर ना करो निकली बार, सचमुच हुण अग वरदी है यार, लोड़ पैन ते ही जाई करो बार, एवें ना किते हो जाई बीमार, मेरा ध्यान हर वक्त तेरे विच रहिंदा, सच्ची गल तेनू भुपिंदर सिंह कहिंदा, मेरे लिए दोस्त तू सारिया तो ही महंगा है, काश किते मैं तेनू लै पाउंदा, हर तरह दे तेनू लाड़ लड़ाउंदा।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी आया है। दोस्तों, दोस्तों प्रोग्राम दिला शायर है तो मैं थोड़ा अपना आर्जितो श्रमनीश। वेल दोस्तों, प्रोग्राम चल रहे दिला शायर थे, 2:48 हो चुके ने दोस्तों ते ना आया है। टाइम कितना निकल गया पता भी नहीं लग गया दोस्तों। वेल दोस्तों, जिंदगी च ना एक आप गल करते हैं कि असी ना बहुत सारे इधर मौके आते हैं कि अपन निराश जल्दी हो जाते हैं। निराश कहने का मतलब ना कई बार सानू सिखा मतलब शायद सानू सिखा दिता होंगे कि अगर सानू या आप किसी को देख लिया होंगे भावें साडे कोई भी बंदे हो, असी ना हमेशा सोच लेंगे कि यार सानू कुछ नहीं मिले या साडा रह गया तो असी निराश हो जाइए। एवं साढ़े सियाने नहीं कह गए कि निराश नहीं होना यार, बिना नाराज़ तो अगे तो बदो। एक बार लग यू पता है कि हाँ यार असी क्यों नाराज़ हो गए, अपना टाइम वेस्ट किया यार। इन्ना सोहनी इन्नी सोहनी जिंदगी है, इन्ना कुछ आ चुका है साड़ी जिंदगी च। देखो ना कहते ना पौड़ियाँ ना जड़ियाँ एक ही करके चढ़ोगे ना फिर ही उपर पहुँचते होंगे। सिर्फ एक पौड़ी चढ़ के आप अपने आप न कह नहीं सकते मैं अपनी मंजिल पूरी कर ली है दोस्तों। क्या बात है जी, प्यार का सबसे अच्छा सबूत विश्वास है। साडे सरोते ने भेजा कि प्यार का सबसे अच्छा सबूत ना विश्वास है। आया है, क्या बात है जी, विश्वास ना बड़ा काम आता है। जिवें कि कहिंदे ने बच्चे की परवरिश संस्कार बड़े काम आते हैं, तो प्यार च ना विश्वास बड़ा काम आता है दोस्तों। एक विश्वास होंगे ना बंदा एक जगह तो दूसरी जगह भावें कितना डिस्टेंस भी हो एक सुकून नाल बैठा होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्ते विश्वास है दोस्तों। तो विश्वास बनाना भी कोई सौखी गल नहीं होंगी, टाइम लगता। एक बार अगर टुट जाए ना विश्वास, वे बनाना औखा हो जाता है, डाउट आ जाता जिन्हों कहते ना मन में। बस यही गल् होंगे, इसलिए विश्वास हमेशा बनाई रखो दोस्तों, अपना बेस्ट दवो दोस्तों। देखो इदा नहीं हो सकता कि थानू पूरी दुनिया झोली पा दे रब, मतलब हर बंदे का प्यार भी नहीं मिल सकता। अगर कोई देना भी चाहे कई बार साढ़े तक नहीं पहुँचता, इसलिए जिसनू तुसी प्यार कर दो ना दोस्तों अपना प्यार उन्हें पूरा पूरा दवो, क्योंकि यही उही साढ़े होंगे ना खास लोग, भावें दोस्त होवे, रिश्तेदार होवे, मापे होन, साडा प्यार होवे, ये सारिया चीज़ा होंदियां दोस्तों। सो दोस्तों चल रहा प्रोग्राम दिला शायर है, तो 2:51 हो चुके हैं, बस कुछ पला दा समय रह गए थे। पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता थानू सारे ने दोस्तों कि साडा प्रोग्राम आऊगा 4 to 5 हैलो जलंधर। मेरे सारे स्रोतियों नू है एक गल दसन जा रहा है कि अपने 4 to 5 ना तुसी अपने लिए ना अपने घर अगर थोड़े कोई इंस्ट्रूमेंट पिया है ना, या तुसी तबला बजा लेंगे हो, भावें मेज ना बजा लें तबला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पिया, हारमोनीयम, पियानो, अपने गिटार, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पिया ना तुसी ओ अपने कोल रख लो, क्योंकि असी अज ना थोड़े तो भी कुछ ना कुछ सुनांगे। असी तो हमेशा म्यूजिक चलाने पर जो म्यूजिक हम दूसरी साइड तो बजूगा ना जो साढ़े कन्ना च पेगा असी वह जरूर सुनोंगे। कहने का मतलब भावे कि कोई ना कोई म्यूजिक बीट होनी ही चाहिए, भावें मूँह ना कड़ो, भावें तुसी थाली नाल भी बजा सकते हो, थाली चम्मच वाला ट्रेंड चले ना उन्हें भी बजा सकते हो, पर हाँ तुहानू बजानी जरूर पवेगी। तां तुहाडियां कहिंदे ना फरमाइशां पूरियां हो गईआं, ते उस तों बाद ही असीं गलबात करांगे।

FM बैंड 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर रेनबो चैनल है। वेल दोस्तों, वेला हो चुका है इस प्रोग्राम दी एंडिंग करन दा। वेल आई होप थानू अच्छा लग गया होगा। ते हुन तुसी सुनोगे 3 to 4 प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जो कि साढ़े दिल्ली तो प्रसारण होएगा। एंड मैं थोड़ा अपना आरज दोस्त रमनीश हाजिर होएगा 4 to 5। हैलो जलंधर शो लैके बहुत मजा आ लुका है। अपने इंस्ट्रूमेंट जरूर उठा लियो, आप जरूर फन करेंगे दोस्तों। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूजा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: श्रोताओं, ओरल हेल्थ हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का आईना होती है। अगर मौखिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र पर। और इस विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल, तो आप हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेजेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868-107070। डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों और मौखिक स्वच्छता की बात करें तो ये कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? दांत और मुंह में परेशानी आने के कारण क्या है, क्यों ये ख़राब होते हैं दांत?
2: देखिए, ओरल कैविटी जो मुख है, इसको पहले इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, मींस पूरे जनरल हेल्थ का स्टेटस जो है ओरल कैविटी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसके जनरल कंडीशन पेशेंट की डेंटल कंडीशन की पुअर है, कि उसमें दांतों में कैविटीज हो रही हैं, उसके

0: मसूड़े ख़राब हैं, उसमें पायरिया लग रहा है और यहाँ उसके मुंह के अंदर सफ़ेद निशान या कैंडिडाइसिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, या उसके कोई इम्पैक्टेड टीथ हैं उसकी वजह से स्वेलिंग है, या पेशेंट कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स पहनते हैं
1: जी,
0: तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे
1: जी।
0: इसके अलावा टीएमजे की प्रॉब्लम्स हैं जो जो जॉ का जॉइंट होता है जबड़ा जो हिलता है जॉइंट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पब्लिक में और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे
1: जी।
0: और मुँह में काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं कई बार, वो सिस्टेमिक डिसीजेज जो बॉडी की जनरल डिसीजेज हैं उससे रिलेटेड हैं, कई बार फीवर के साथ अल्सर्स आ जाते हैं और कैंसर तक का रूप ले लेते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शो में।
1: जी, तो सुना श्रोताओं आपने, आज हम डिस्कस करेंगे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और मुंह में होने वाली परेशानियों की। देखिए, अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर है 011-2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे लेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सभी दांतों में ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सब में कैविटीज होती हैं, और जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करना। जैसे कि हम हमेशा पब्लिक में और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि ब्रश जो है ट्वाइस डेली करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और कौन सी टूथपेस्ट के साथ करना चाहिए ये भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड होना चाहिए, बिकॉज फ्लोराइड है वो कैविटीज को प्रिवेंट करता है, कि कैविटी को रोकता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट एनेमल, ओके, बट एनेमल में भी केरीज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। उसकी क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, वो सब मैं आपको साथ साथ इस प्रोग्राम में बताता रहूँगा।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उनका कॉल।
0: हाँ जी जरूर।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आपको भी
0: नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही अर्ज कर रहा हूँ।
1: जी,
2: तो मेरे 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि कई शख्स कहते हैं हमारे मुंह में 32 दांत हैं, कई कहते हैं 28 हैं, क्योंकि मेरे मुंह में स्वयं 28 दांत हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब मदर फादर की वजह से ही ऐसा होता है, या फिर हमारा कोई कुदरतन मतलब ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। पहला सवाल मेरा ये
1: जी।
2: दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्कल दांत होती है, जो अक्कल दांत जिसे कहते हैं,
1: जी जी,
2: अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर क्या करना चाहिए उपाय। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, और ऐसा ही अगर हम जो है दांत साफ करते वक्त ऐसा करें तो कोई हर्ज तो नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि हम कुछ भी खा लें, कुछ ही पी लें, किसी भी पेस्ट को इस्तेमाल कर लें, किसी ब्रश को, न जाने होता क्योंकि 15 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद मुंह से स्मेल आनी फिर शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले चिगम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मेरे 4 सवाल है, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल आपने सुन लिए,
0: 3-4 सवाल हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके 28 दांत हैं और इनके 32 क्यों नहीं हैं। तो इसका रीज़न ये है कि पहले जो इंसान था, मतलब सेंचुरीज काफ़ी सालों से पहले, तो उस टाइम जो है रॉ फूड खाता था, फ्रूट तोड़ा और वो खा लिया, पका के या सॉफ्ट फूड नहीं खाता। तो उस टाइम पे 32 दांतों की इंसान को ज़रूरत होती थी। तो जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, सॉफ्ट फूड पे आया, तो ऐसे ऐसे 32 जॉ का साइज़ जो है श्रिंक होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो 32 दांत होते थे, जो लास्ट के मोलर हैं, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो अब या तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, या इरप्ट होते हैं तो टेढ़ी मेढ़े डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, अगर आपके 28 दांत हैं तो वो भी नॉर्मल ही है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर इम्पैक्टेड टीथ हैं, जो कि विजडम टीथ जैसे कहते हैं, अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप उसका चेकअप कराइए आपके नियरेस्ट डेंटल सेंटर पे। अगर वो कोई पैथोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड है, या वो अगर टेढ़ा है और वो साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसका एक्सरे करा करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो इम्पैक्टेड टूथ है, जो अभी निकला ही नहीं है, उसके ऊपर गम की कवरेज होती है, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करती रहती है, उसको सोर थ्रोट भी होता है, कई बार उनको फीवर भी हो जाता है रिकरेंट उसकी वजह से। तो आपका चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अगर उसके साथ टूथ बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। अगर कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है, कई बार इम्पैक्टेड टीथ के साथ सिस्ट, रसोली या कोई ट्यूमर भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, every 3 years or 5 years। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक्सरे जरूर होना चाहिए, कहीं उसके साथ कोई पैथोलॉजी तो एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि जो दांत हैं हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अपना जो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है वो इन्हीं से चबाते हैं और हमारे पेट तक जाता है, और इनकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज़ की। इससे अगर आपको भी है कोई आपके मन में सवाल या जानना चाहते हैं कोई बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ना, जिसके लिए नंबर है 011-2342-1080 और 2342-1080।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैविटी की। अगर बात कैविटी की करें तो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है?
1: देखो, डेंटल कैविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा

0: व्हाट्सएप से मैसेजेस के लिए 9868107070 है हमारा नंबर। डॉक्टर हरमीत सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम कैविटी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैविटी की समस्या क्यों होती है, इसका कैसे पता चले कि किसी को कि उसको कैविटी हो गई है और इसका निदान क्या है?
1: देखिए, कैविटीज़ की जो नॉर्मली समझा जाता है कि
0: जी
1: कैविटीज़ जो है ब्लैक कलर की, जिसमें होल हो जाता है, कि वो कैविटीज़ हो गई
0: जी
1: हैं, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है एज अ डेंटल केरीज, जो कि एक वाइट स्पॉट लीजन की तरह स्टार्ट होता है। ये लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि वाइट स्पॉट लीजन्स जो होते हैं डेटर एक्चुअली डेंटल केरीज, जो इनिशियल स्टेज में है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको कैविटीज़ में प्रोग्रेस होने में। तो वो बहुत अच्छी स्टेज है उसको प्रिवेंट करने की। हम उसको फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं और उसको फ्लोराइड जेल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं और फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं क्लिनिक में, तो उससे जो है हम डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना होगा और देखा होगा, अपने साथ भी होता है कि जब हमें दांत में दर्द होता है तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है, कि कोई कैविटी हो गई है या ये जो दर्द है वो नॉर्मल है। तो कैसे पता करें कि ये दांत का जो दर्द है वो नॉर्मल है या कैविटी है उसमें?
1: नहीं, देखिए, उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो क्लिनिकली चेक करेंगे कि दांत कि में कैविटी है या कोई उसके साथ गम्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार कुछ लोगों को न्यूरेल्जिया जैसी पेन होती है, करंट की तरह लगता है, तो उसमें दांत के कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी दांत में पेन होती है। कई बार टूथ जो है क्रैक हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं होता क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली भी, एक्सरे में भी नहीं दिखता है, तो उसको जो है क्रैक टूथ सिंड्रोम जैसे कि हम कहते हैं। तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर ही आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी
2: डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एज 48 है।
1: हाँ जी।
0: और आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम कुंवर सिंह है
0: जी।
2: तो मेरे ये टीथ में गैप आ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? नीचे वाले दो जो फ्रंट के टीथ में ज्यादा गैप आ रहा है
0: जी,
2: तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस एज में क्या किया जा सकता है? ये
1: देखिए, जैसे कि आपने एज अपना 48 बताया है, तो जनरली इस एज में गैप होना का कारण ये हो सकता है कि आपके टीथ जो हैं वो वीक हो रहे हैं, मीन्स उसके गम्स जो हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं वो गम्स वीक हो गए हैं। तो हो सकता है कि उसमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया हो, बोन जो है दांतों को छोड़ के नीचे चले जाने की वजह से टीथ का फ्लेयरिंग हो जाता है, तो गैप हो सकता है उसकी वजह। तो आपको एक डेंटल सर्जन से चेकअप कराना चाहिए, तो जो भी उसका कारण है उस कारण को दूर करके उसका सलूशन किया जा सकता है।
0: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैविटी की, अब हम बात करते हैं पायरिया की। ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और बचाव कैसे करें इससे?
1: देखिए, पायरिया एक जनरल टर्म है जो कि साइंटिफिकली हम उसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है ठीक से ब्रश नहीं करता है और उसका प्लाक जो है डिपॉजिट रह जाता है दांतों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो इरिटेट करता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं, तो वो इरिटेट करते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो उसकी वजह से तो बॉडी का रिएक्शन होता है, तो गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जैसे ही पेशेंट ब्रश करता है तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और होता यह है कि पेशेंट ये समझता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्रश करना छोड़ देता है, वो उंगली से क्लीन करना शुरू कर देता है। तो होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपका प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के आसपास तो ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाती है पेरिडोनटाइटिस में। उसमें क्या होता है, गम्स के साथ साथ बोन भी जो है डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं, रिजॉर्प्शन होना शुरू कर जाते हैं, तो उससे जो है पॉकेट्स बन जाती हैं गम्स में, पेरिडोनटल पॉकेट्स जिनको हम कहते हैं, और साथ साथ टीथ की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सबको टुगेदर हम बोलते हैं पायरिया हो गया है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम सबको बोलते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर इफ यू वांट टू कीप यू

0: क्लीन द टीथ
1: जी। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल ओरल डिजीजेज, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें इस विषय पर। अगर इससे संबंधित आपके पास भी हैं कोई सवाल या चाहते हैं आप अपनी परेशानी का समाधान, तो आप हमें कॉल करिए ना, नंबर से 01123421080 और 2342102। व्हाट्सएप से मैसेज के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आपकी सेहत से जुड़े कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हमें बता रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस जैसे खास विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनको कॉल।
1: हाँ जी, जरूर।
0: हेलो हेलो हेलो
2: हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
0: जी जी जी
2: हाँ जी, नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
0: जी
2: सबसे
0: नमस्कार।
2: पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं,
0: जी
2: हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है इससे।
0: जी धन्यवाद।
2: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट्स हैं।
0: जी,
2: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है,
0: जी
2: काला काला,
0: जी
2: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को, मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
0: जी।
2: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए, एक और मोलार है।

0: हेलो
1: हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
0: जी जी जी
1: हाँ जी, नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
0: जी
1: सबसे
0: नमस्कार
1: पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं,
0: जी
1: हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है इससे।
0: जी धन्यवाद
1: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट्स हैं।
0: जी
1: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है,
0: जी
1: काला काला,
0: जी
1: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को। मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
0: जी
1: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए। एक और मोलार है मेरा,
0: ओके
1: उसमें बहुत ज़्यादा मुझे पेन था और वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने भी लगा है। एक ने बोला कि आप उसको निकलवा लीजिए और दूसरे ने बोला आप आरसीटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आरसीटी करवा लिया है उसका, मगर अभी भी खाने में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो पहले के जितना पेन तो उसमें नहीं है, मगर फिर भी वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है खाने में। तो
0: जी
1: ये
0: डॉक्टर
1: पूछा था
0: साहब
1: कि उसका मतलब क्या हमने ठीक किया उसमें आरसीटी कराकर।
0: जी
2: देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपके दांतों में काला काला कीड़ा लग गया है पीछे वाले दांतों में।
1: हाँ
2: देखिए,
1: जी,
2: काला काला कीड़ा जो है वो कैविटीज़ ही हैं कि नहीं हैं, वो या वो सिर्फ़ एक स्टेन्स ही हैं। जो ब्लैक दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि कैविटीज़ ही हैं। अगर उसमें होल है तो उसको हम कैविटीज़ बोलते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टेन्स हो, एक्सटेंसिक स्टेन्स हो, जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो कैविटीज़ ही हैं। तो आप एक चेकअप करा सकते हैं कि वो कैविटीज़ हैं कि नहीं है। तो और दूसरी चीज़ आपने बोला कि वो स्प्रेड ना हो जाए, कैविटीज़ जो हैं दूसरे दांतों में ना लगे। देखिए, इन कैविटीज़ जो हैं, डेंटल कैविटीज़, वो इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक दांत से दूसरे दांत को लग गई, या एक साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैविटी लग गई, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैविटीज़ का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेंटल कैविटीज़ जो हैं प्लाक की वजह से होती है, जो प्लाक दांतों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है। और जब आप मीठा साथ में खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है प्लाक में, वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और वो एसिड जो है टूथ को डिसॉल्व करता है, एनेमल को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से उसमें कैविटीज़ हो जाते हैं। तो मेन है आपको प्लाक को कंट्रोल करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से और डेंटल फ्लॉस करके। तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है डेंटल कैविटीज़ का। और दूसरा क्वेश्चन बताया कि आपका टूथ में पेन था, उसका रूट कैनाल हो गया है। तो आप जो है अपना चेकअप करवा करके, आरसीटी के बाद का एक्सरे करा करके देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कैपिंग, उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफ़ी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?
2: देखिए, डेंटल कैविटीज़ जो हैं काफ़ी टाइम से हैं लोगों में,
0: जी
2: ठीक है। तो हमारे जो हैं दो मॉडल होते हैं डेंटिस्ट्री में। एक होता है ऑपरेटिव मॉडल, जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री, जो डॉक्टर जीवी ब्लैक ने सेंचुरीज एगो दिया था कि दिस इज़ ऑपरेटिव मॉडल, कि कैविटीज़ हैं उसमें कैविटीज़ को क्लीन किया और उसमें फिल कर दिया, मीन्स ड्रिल एंड फिल, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री डेट इज़ बेस्ड ऑन द। तो कैविटीज़ तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया, तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में, तो उससे जो है कैविटीज़ होने से उन्होंने रोका का। तो उन वो डेवलप कंट्रीज़ ने काफ़ी हद तक कैविटीज़ को कंट्रोल कर लिया है। तो उन्होंने क्या क्या अपनाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वो जो है ब्रश जो है आपको एक तो दिन में दो बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को 2 मिनट तक करना चाहिए। और पेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए ब्रश करना, जैसे जो बेबी है न्यू बॉर्न, उसका फर्स्ट टूथ अपीयर होता है 8 to 10 month ऑफ एज में। तो जैसे ही फर्स्ट टूथ अपीयर हो तो उसको जो है सॉफ्ट बेबी ब्रश से उसको क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए, बिना शक आप बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं, ठीक है। और उस बच्चे का फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट शुड बी एट हिज फर्स्ट बर्थडे, मीन्स 1 ईयर की अराउंड उसको फर्स्ट विजिट आना चाहिए। सेकेंड, जो न्यू बॉर्न टू लेस देन 18 ईयर जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उसमें जो ब्रश है बिना पेस्ट के आप कर सकते हैं। बट 18 मंथ टू 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं, 6 ईयर तक के बच्चे, उनको जो है किड्स टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm होना चाहिए। और जो 6 ईयर से अबव हैं उनको 1000 ppm एडल्ट टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला यूज़ कर सकते हैं।

0: तो उससे जो है प्रिवेंशन होगा डेंटल कैविटीज़ का। और सेकंड, ब्रश करना कैसे है, ब्रश करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं, तो उसमें ये होता है ब्रश के ब्रिसल्स को 45 डिग्री एंगल पे रख करके गम लाइन पर, और उसको वाइब्रेटरी मोशन देना है और उसको फिर डाउन मूव करना है टुवर्ड्स द च्यूइंग सरफेस। तो मॉडिफाइड बास टेक्निक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे करना चाहिए ब्रश
1: जी।
0: और इसके अलावा आपको जो 18 मंथ से ऊपर, मैंने आपको बताया कि 500 ppm टूथपेस्ट यूज़ करना है, 6 ईयर ऑनवर्ड्स जो है एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ब्रशिंग फ्रिक्वेंसी ट्वाइस डेली करना है, और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस जरूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस है इंटर डेंटल एरिया जो है वो क्लीन करने के लिए होता है, और वो एक थ्रेड की तरह है, वो फिंगर्स पे लगा के सभी दांतों को बीच में से क्लीन करना चाहिए। आजकल जो है एंगुलेटेड फ्लॉस भी आते हैं, हैंडल वाले फ्लॉस जिसको बोलते हैं राइट एंगल्ड फ्लॉस, तो उसमें ये है कि हैंडल लगा होता है उसको होल्ड करके आप इंटर डेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं, उससे कैविटीज़ की और गम्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आपको रेगुलर एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बीच में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते, क्या करें, अभी आपने जो बताया, और उसके बाद क्या नीम से दांत की का नीम का दातुन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है, और क्या फिटकरी से गार्गल करते रहना ठीक है?
0: देखिए, अगर बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं तो अब उनके पेरेंट्स को उनको सिखाना है कि कैसे ब्रश करना है, पेरेंट्स मिरर के सामने खड़े होकर पेरेंट्स उनको सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, वो खुद करें और रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, खुद भी करें बच्चों को भी करवाएं। और दूसरा सवाल था उनका
1: कि फिटकरी से के पानी से क्या गार्गल करने चाहिए।
0: जो बेस्ट माउथ वॉश जो है ना हमारे माउथ के लिए, वो है गुनगुना पानी में हल्का सा नमक डालिए, जो सादा नमक होता है ना, बस वही नमक डालिए और उसको सलाइन बना के, मतलब 0.9% जो होता है, तो जितना आंसुओं में नमक होता है ना उतना नमक आपको पानी कोस से पानी में डालना है, तो उससे जो है रिंस कर सकते हैं आप ब्रश करने के बाद।
1: और एक सवाल था कि नीम का दातुन क्या दांतों के लिए फायदेमंद है?
0: देखिए, हम यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, ठीक है। तो हम जो हैं एज अ डेंटिस्ट, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं तो टूथब्रश एडवाइस करूँगा, सॉफ्ट टूथब्रश करना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी, जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं हेमलता बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से। सबसे पहला सवाल मेरा है कि वैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर मुझे ब्रेसेस करवाना है तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है या हम कभी भी करवा सकते हैं किसी भी एज में? और अगर हम बड़ी एज में करवाते हैं तो क्या उससे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैंने दांत में ना अपना कैपिंग करवाया था, तो वो 2 साल पहले करवाया था, तो अभी उस जहाँ पे कैपिंग करवाया था जिस दांत में, वो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी होता है और समटाइम बहुत तेज भी होता है, तो क्या मुझे वो कैपिंग चेंज करवानी चाहिए? और एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग दांतों की क्लीनिंग के लिए या उनकी वाइटनिंग के लिए हमें साल में हम कितनी बार उसे करा सकते हैं?
1: जी,
2: यही मेरे 3 सवाल है। थैंक यू।
0: देखिए, आपका जो सवाल था कि कैपिंग करी हुई है दांत के ऊपर और कैपिंग की वजह से आपको पेन हो रहा है, देखो कैप जो होता है वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल है टूथ के ऊपर, तो उसकी वजह से तो पेन नहीं है। पेन तो है कि क्या आपने उस दांत में आरसीटी कराया था कि नहीं कराया था। जनरली आरसीटी के बाद ही हम कैप एडवाइस करते हैं दांत के ऊपर, और अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है आपने आरसीटी ना कराया, उसमें कैविटी हो जो नीचे नर्व को टच कर रही है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ठीक से इंटरडेंटल कैप के साथ इंटरडेंटल एरिया में क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रश से, तो वहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड पेन हो जाता है। तो आप अपने घर के पास जो भी डेंटिस्ट हैं, आप उनको उनके पास चेकअप कराइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए।
1: सर, इनका सवाल था कि क्या टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक कराने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में कराए जा सकते हैं?
0: देखिए, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ईजिली हो जाएंगे, और जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो जल्दी से जल्दी आपको कराना चाहिए इसका।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे, सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से पूछ रहे हैं।

0: हैं क्या टूथपेस्ट के स्थान पर दंत मंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनकी उम्र 52 वर्ष है और ज्यादातर दांत इनके घिस चुके हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने।
1: देखिए, जो मंजन जिसको हम टूथ पाउडर कहते हैं,
0: जी
1: वो जो है एब्रेसिव होता है, वो दांत को घिस देता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि दांत घिस गए हैं, वो दांत घिस ही इसलिए गए हैं कि आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं।
0: जी
1: तो हम पाउडर नहीं एडवाइस करते हैं यूज़ करने के लिए। टूथ पेस्ट यूज़ करना चाहिए, फ्लोराइड वाला टूथ पेस्ट, जिसमें कि एडल्ट में एटलीस्ट 1000 mg PPM, 1000 PPM का फ्लोराइड होना चाहिए, तो पेस्ट यूज़ करना चाहिए।
0: जी। दिनेश कुमार भंडारी हमें नेपाल से लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 37 साल है और जो उनके दांत हैं गम से खून निकलता है, क्या समस्या है ये इन्हें बताएं प्लीज़।
1: अगर आपको कोई अगर जनरल बीमारी या सिस्टेमिक बीमारी नहीं है, तो उसका जो मेन रीज़न जो होता है गम्स में से ब्लीडिंग का, वो लोकल फैक्टर्स जो कि प्लाक जो गम्स के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं,
0: जी
1: तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस हो जाता है। तो ब्लीडिंग होती है ब्रश करते टाइम, कई बार अपने आप भी होना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग। तो उसका मैंने पहले भी बताया कि आपको ओरल हाइजीन जो है ठीक रखना है, ब्रशिंग ट्वाइस करना है, जिस टेक्निक से बताया वैसे करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, और इंटरडेंटल ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस करके प्लाक को कंट्रोल करें। अगर आपके दांतों के आसपास टार्टर डिपॉजिट हो गया है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसका आपको प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करा करके एक बार कराना होगा। उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं दांतों को।
0: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो हैं आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो भी दूध का दांत है, क्या करें?
1: देखिए, 5 साल की उम्र है तो वो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिड्यूअस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं, या तो उसमें कैविटीज़ हो गई हैं, या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं। तो अगर उसको उसमें दर्द हो रहा है, तो आपको चेकअप ही कराना पड़ेगा। तो क्या वो दांतों की वजह से है या नहीं है, अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना होगा,
0: जी
1: यही है इसका।
0: डॉक्टर साहब, मुंह से जुड़ी परेशानियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनको कॉल। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट गया है। सर, हम अभी बात कर रहे थे दांतों की, अब मैं बात आपसे करूंगी मुंह से जुड़े स्वास्थ्य की। एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से दुर्गंध आना। ये समस्या कई बार उन लोगों को भी परेशान करती है जो अच्छे से ब्रश करने के साथ साथ टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देते हैं, बट इसका कारण क्या है?
1: देखिए, मुंह से स्मेल आना, जैसे हेलिटोसिस हम कहते हैं, वो मोस्ट कॉमनली तो गम्स की प्रॉब्लम जो
0: जी
1: है उसकी वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ब्रश करते हैं, तो ये नहीं बताया आपने कि फ्लॉस भी करते हैं। मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ कि ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है। डेंटल फ्लॉस जो एक धागे की तरह होता है, वो सभी को डेली करना चाहिए फ्लॉस। तो फ्लॉस आप साथ में करिए, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा, तो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। अगर ये तो है लोकल फैक्टर जो गम्स की वजह से हो जाता है, यहाँ कुछ कैविटीज़ हैं आपके दांतों में बहुत बड़ी बड़ी, जिसके अंदर के फूड डेब्रिज रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो उसमें फाउल ऑडर प्रोड्यूस करते हैं, तो कैविटीज़ की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपके ओरल हाइजीन पहले चेकअप कराइए, अगर सब ठीक है तो उसका कुछ सिस्टेमिक कारण भी हो सकता है। अगर कुछ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो जाती है, या ENT की जैसे पैरानेजल साइनसिस में कुछ साइनोसाइटिस है, उसकी स्मेल भी इसी तरह माउथ के करीब आती है, तो इस तरह से हो सकती है।
0: जी, मुंह के अंदर दुर्गंध आने का कारण हमारा पाचन तंत्र भी हो
1: हो
0: सकता है,
1: सकता है,
0: पेट
1: बिल्कुल।
0: से जुड़ी परेशानियां।
1: हाँ
0: डॉक्टर
1: जी,
0: साहब, टंग क्लीनिंग जो है वो एक ओरल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ सर ये भी बताइए कि मुंह में छाले हो जाना जो कई बार एक बड़ी समस्या बन जाता है, खासकर गर्मी के सीज़न में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या ये छाले ही अल्सर हैं या कुछ और कैसे इनका निदान किया जा सकता है?
1: देखिए, टंग क्लीनिंग तो ज़रूर करना चाहिए। जब हम ब्रश करते हैं सभी, तो उसी ब्रश से आप टंग को भी क्लीन कर सकते हैं।
0: जी
1: तो टंग जो है नॉर्मली पिंक कलर का होता है, तो ऐसे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, ब्लैक या वाइट कलर का। तो अगर कुछ है तो उसका चेकअप होना चाहिए।
0: जी
1: तो

0: सेकंड सवाल था आपका कि मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए छाले तो बहुत तरह के मुंह में हो जाते हैं, बहुत कॉमन जो है वो तो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं स्ट्रेस की वजह से या नींद ना पूरी हो उसकी वजह से, या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे फीवर हुआ तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर या लिप्स के पर, तो ब्लिस्टर जब रप्चर होते हैं तो वो जो है वायरल हर्पिस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दांत कहीं शार्प है या कोई कैक आर्टिफिशियल क्राउन लगा हुआ है वो शार्प है, उसके ट्रोमा रेगुलर ट्रोमा की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो है हैबिट होती है टोबैको खाने की या स्मोकिंग की
1: जी,
0: तो उनमें भी अल्सर हो जाता है। तो अगर कोई भी अल्सर किसी भी तरह का अल्सर है 2 से 3 हफ्ते की अगर उसकी हिस्ट्री है तो उसका बायोप्सी इज मस्ट, वो मैंडेटरी है कि उसका बायोप्सी होना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन या एक खाली मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बायोप्सी से रूल आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। तो इसलिए जो है
1: क्या ये ओरल कैंसर से भी सर रिलेट करता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, कोई कुछ रेड फ्लैग फीचर्स होते हैं अल्सर अल्सर के अंदर, वही मैंने फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 2 to 3 weeks से ज़्यादा कोई भी अल्सर है तो उसकी बायोप्सी होना चाहिए। अगर कोई अल्सर जो है अगर हम उसको फील करें और वो रफ फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, थिक फील हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग फीचर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की तरफ, उसमें हो सकता है। इसके अलावा अल्सर के साथ साथ अगर जॉ बोन के नीचे या मुंह के आसपास कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो उस वो भी एक फीचर है, रेड फ्लैग फीचर जिसको कि हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को जीरोस्टोमिया है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर और साथ में अल्सर है, तो वो भी एक रेड फ्लैग फीचर है, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्सर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होता तो उसका बायोप्सी करा करके उसका डायग्नोसिस होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो
1: जी
2: साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
2: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम से प्रोग्राम का दिल सच चाहता हूँ।
1: जी जी,
2: और डॉक्टर साहब का भी शुक्र अपने दिल से करना चाहता हूँ।
1: जी जी, आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मेरा सवाल ये है जी, मेरा जार दांत एक जार मेरी फूट रही है और वो कभी खींच जाती है कभी बंद हो जाती है, और मेरा जार दांत कभी खींच जाता है कभी बंद हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है
1: जी।
2: अब कोलगेट कौन सा बरतना चाहिए जी?
1: जी जी,
2: सवाल है जी,
1: जी आपने सवाल इनका सुन लिया डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ की शायद प्रॉब्लम है।
0: हाँ ये बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी होती है, तो हमने नॉर्मली देखा है कई पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो है कभी भी सेंसिटिविटी होती है तो टेलीविजन पे या रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सेंसिटिव पेस्ट लगा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें जो है ऐसे टीवी पर या कहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके सेंसिटिव पेस्ट अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांत घिस गए हैं या दांत कहीं से क्रैक हो गया है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, गम्स नीचे चले गए हैं दांतों को छोड़ करके, रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कई कारण है, टूथ क्रैक हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसिटिविटी हो क्यों रहा है। अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके सेंसिटिव पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, और जो है आप डेंटल चेकअप कराइए और जो भी उसका डायग्नोसिस है फॉर उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस पर आज हमें बहुत बेहद जानकारी, खास जानकारियां मिल रही हैं और ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर हरमीत सिंह। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मौखिक स्वच्छता से जुड़े खास विषय पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं TMJ की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: TMJ उसको जैसे कि टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, वो एक जॉ बोन का जॉइंट है। जैसे नी जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, ऐसे जॉ का भी एक जॉइंट है, इसको TMJ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको हम टेम्परोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जनरली ये होता है, इस पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉ मूवमेंट में। सुबह उठते हैं तो उनको जॉ मूवमेंट करते टाइम पेन स्टार्ट होता है। पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट होता है और वो कान के आसपास या जॉ में या कान के ऊपर या कान के बैक साइड में कई बार नेक तक पेन हो जाता है। तो वो TMJ की वजह से हो सकता है, तो उसका चेकअप कराना चाहिए। तो जनरली उसका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन जो है अपने जॉ को क्लिंच करते रहते हैं और कई बार तो अनकॉन्शियसली सोने के बाद भी वो जॉ को क्लिक करते रहते हैं, जॉ को ग्राइंड करते रहते हैं, टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं जॉ की, वो जो है स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पाजम में चली जाती हैं। तो उसकी वजह से जॉ में स्टिफनेस हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में पेन करता है
0: जी।
1: तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीव करना है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए। चाहे आप योगा करके करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस के अलावा सेकंड रीज़न जो नॉर्मली टेम्परोमेंटलर जॉइंट डिसऑर्डर्स का होता है वो स्लीप। स्लीप अगर प्रॉपर ना ली जाए, नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो जैसे हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह TMJ के लिए भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस करूँगा, स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए, स्लीप हाइजीन। तो उसमें यह है कि कोई भी इंसान उसको जो है एक कांस्टेंट टाइम पर सोना चाहिए और कांस्टेंट टाइम पर उठना चाहिए, सेम टाइम पर। जैसे रात को अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ उसी टाइम ही सोएं, और उसे सुबह 5-6 बजे उठ रहे हैं तो उसी टाइम ही उठना चाहिए। और दोपहर का या दिन में अगर सोने का टाइम है तो वो उसको लिमिटेड रखें कम से कम। और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन टेलीविज़न जो है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जहां आपको सोना है वहां पर आपको नॉइज़ कम कर देनी चाहिए, नॉइज़ नहीं आना चाहिए, लाइट डिम कर देनी चाहिए। और कैफीन को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। कैफीन मीन चाय कॉफ़ी जैसे ड्रिंक्स लेते हैं, वो शाम को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्योंकि इफ़ेक्ट रहता है कि नींद नहीं आएगी फिर आपको। और रात के टाइम खाना जो है लाइट खाना चाहिए, और जनरली 2 to 3 hours बिफोर बेड डिनर हो जाना चाहिए। और डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका

0: टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, वो आपको डेंटल चेकअप कराएंगे तो फिर पता चलेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने स्लीप हाइजीन पर इतनी गहरी हमें अच्छी जानकारी दी, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम अपनी दिनचर्या है अगर उसको अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा
0: आपके हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने टीएमजी की बात करी, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर टीएमजी डिसफंक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस?
0: The reason I have already told you that it is because of the stress and sleep disturbance. Sometimes there is malocclusion or defective restoration, or if there is artificial teeth, occlusion is not there proper. So that all can cause TMJ disorder. So treatment I already explained, stress should be relieved and proper sleep should be taken.
1: Doctor Saab, ek aur important question hai ki, ab baat unki kar lete hain jo denture ka istemal karte hain, unki oral health कितनी इम्पॉर्टेंट है और डेंचर्स के टाइप क्या हैं, क्या इसको लगाने के बाद मुंह की सफाई यानी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जैसे कि अभी हमने स्लीप हाइजीन की बात की, ऐसे ही हम अब डेंचर हाइजीन की बात करना बहुत जरूरी है फॉर द डेंटिस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं, जैसे कि कंप्लीट डेंचर अपर लोअर है, या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, या फिक्स पार्शियल डेंचर है, कुछ लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं, उसके ऊपर क्राउन लगा होता है, तो इनका हाइजीन मेंटेन कर, जो तो फिक्स्ड हैं उसको तो आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश करके आपको जो है उसको क्लीन रखना है, और जो रिमूवेबल डेंचर है उसको जो है आपको रेगुलर क्लीन करना है, और रात को सोते टाइम तो उसको उतार करके एक डेजिग्नेटेड जो कंटेनर है रखने के लिए आपने रखा हुआ हो उसके अंदर रखना चाहिए, ताकि गम्स जो है दांतों के नीचे गम्स हैं उनको जो है रेस्ट मिले। और डेंचर हाइजीन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनली जो था वो ये है कि वेट स्टोरेज, डेंचर को जो है पानी में रखा जाता है ताकि वो जो है उसका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो, या मीन उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उसको क्लीन जो है कि वो कैसे करना है, जैसे ही आपने डेंचर उतारा उसको सबसे पहले तो उसको वाटर से क्लीन करना है, एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, उसके साथ जो भी फूड डेब्रीज हैं उसके ऊपर उसको क्लीन करना है। तो डेंचर को टूथपेस्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एब्रेसिव होता है तो उसके साथ नहीं करना चाहिए, अब नॉर्मल सा एक सोप सोल्यूशन बना करके तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं डेंचर को। बट अगर उसमें कोई स्टेन्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर, या कोई स्मेल आ रही है या किसी तरह से, तो उसके लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें बॉक्स में डाल करके उसको कुछ घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर वाटर में डालने से एफर्वेसेंट्स आते हैं, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट होते हैं, और बफर होता है जो कि उसको डिसॉल्व करता है उसके अंदर जो भी डेब्रिज हैं उसको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा अगर टैबलेट्स नहीं है तो विनेगर जो होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट करके 1:4 वाटर से डाइल्यूट करके तो उसके अंदर हम कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट रख सकते हैं, बट उसको थॉरली रिंस कर लेना चाहिए सुबह उठ करके अच्छे से बिफोर यू पुट इन द माउथ, तो उसको क्लीन करना है। और इसके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आजकल जो डेंचर बन रहे हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल से बन रहे हैं, एक्रेलिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता। तो अभी जो एडवोकेट करते हैं कि डेंचर को जो है आप उतारने के बाद वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके आप ड्राई कंटेनर में रखिए, क्योंकि उसमें श्रिंकेज के चांसेस नहीं हैं, वो डैमेज नहीं होगा, तो अगर गुड मटेरियल का है तो उसको आप ड्राई स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो ड्राई स्टोरेज का फ़ायदा यह है कि उसके अंदर जो ह्यूमिड एटमोसफेयर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ कैंडिडाइसिस नहीं होंगे पेशेंट को, तो ड्राई भी स्टोरेज कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको डेंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है आपका मटेरियल कैसा है उसको फॉलो करें, ठीक है। और डेंचर से एसोसिएटेड पेशेंट को जो है कैंडिडाइसिस, मुंह के अंदर सफ़ेद निशान हो जाते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंचर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली। और एंगुलर कैलाइटिस जिसको बोलते हैं कि माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसका मेन कारण तो होता है कि आपका जो डेंचर है अगर वो लूज़ हो गया है या फिर उसकी हाइट कम बनी है, तो उसके माउथ के कॉर्नर पे जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है।

0: है तो वहाँ पर एंगुलर कोलाइटिस हो जाता है। तो डेंचर की हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर डेंचर स्टेबल है और वो उसमें हिलता नहीं है, लूज़ नहीं है, तो फिर वो डेंचर एंगुलर कोलाइटिस और कैंडिडाइसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ब्रेसिस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी, और जिनके दांतों में ब्रेसिस लगे हैं उनको दांतों की सफाई उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे में कैसे दांतों की सफाई के साथ ओरल हेल्थ को भी बेहतर रखा जा सकता है?
0: देखिए ब्रेसेस जो हैं दो तरह के आते हैं, एक तो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं। रिमूवेबल को तो आपको रोज़ मतलब निकाल करके उसको वैसे ही क्लीन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, रिमूवेबल ब्रेसेस को ब्रश से सोप सॉल्यूशन से क्लीन करना है। इसके अलावा जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं जिसको कि हम नहीं पेशेंट अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, ऑर्थो ब्रश नाम से ब्रश आते हैं, तो उससे जो है क्लीन हाइजीन क्लीन रखना है। इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करके आप उसको एरियाज़ को क्लीन रख सकते हैं, तो कहीं पे फूड डेब्रिज या प्लाक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर प्लाक रहेगा तो उससे टीथ में लूज होने के और ऑर्थो ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो हाइजीन इम्प्रूव करके रखना बहुत ज़रूरी है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर भी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, सागर हमें विजय पूरा कर्नाटका से लिख रहे हैं कि वॉट ओरल रूटीन वी कैन फॉलो टू कीप आवर टीथ एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इन गुड कंडीशन। और हमारा भी आपसे यही सवाल है कि अब कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, तो कैसे अपने दांतों और अपने जो मुंह के स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा इन्होंने और लास्ट में है, क्योंकि अब समय कम रह गया है तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो भी कॉरपोरेशन से सप्लाई आते हैं उसमें 1% फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। तो कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन एक वन मेथड है जिससे कि कैविटीज़ को, दांतों की कैविटीज सड़न को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए। आजकल तो बुक्स में भी दिया हुआ है, NCERT बुक्स में भी अवेलेबल है कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश मैंने आपको बता ही दिया, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी टूथपेस्ट उठा करके या पाउडर से या ऐसे जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। एडल्ट में एटलीस्ट 1000 ppm, चाइल्ड में बिलो 6 ईयर 500 ppm टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। और टूथपेस्ट जब ब्रश किया टूथपेस्ट के साथ तो आपको स्पिट करना है 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करना, ताकि जो पेस्ट का इफेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहना चाहिए। तो स्पिट करें ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक पानी से रिंस नहीं करें, 10 मिनट के बाद आप रिंस करें। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन होती हैं कि आप जो है शुगर का कंजम्पशन मींस मीठे का जो है कम से कम रखें, स्टिकी और एसिडिक फूड,
1: खासकर रात में,
0: बिल्कुल, और स्टिकी फूड जो है जो दांतों पे चिपके रह जाते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। एसिडिक फूड जैसे कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोलास पीते हैं तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और
1: सर अगर कभी स्टिकी फूड लेते भी हैं तो उसके बाद हमें एकदम ब्रश करना,
0: हाँ, इसके बाद बिल्कुल उसके बाद तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए। और जैसे कुछ बच्चों को जो है टॉफीज या चॉकलेट्स रेगुलर नहीं देना चाहिए, उनको ओकेजनली कभी बर्थडे पे या दे सकते हैं, तो उस टाइम आप उसी टाइम जो है साथ में ब्रश जो है वो कर लेना चाहिए। और एवरी 6 मंथ जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और बच्चों में जो है पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं तो वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर पिट एंड फिशर्स हैं, उनको प्रोन है कैविटीज के, तो सीलेंट्स लगा करके कैविटीज को होने से रोक सकते हैं, डेट इज प्रिवेंटिव मेजर। इसके अलावा हम जो जैसे कि वाइट स्पॉट लीजन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैविटीज जो स्टार्ट होती हैं व्हाइट स्पॉट रीजन से स्टार्ट होते हैं, अगर वहीं पर हम कैविटी फ्लोराइड वार्निश या फ्लोराइड जेल अप्लाई करते हैं तो वो केरीज जो है कैविटीज में कन्वर्ट होने से रुक जाती है। और अगर फिर भी आपको शुगर लेना ही है तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल स्वीटनर आते हैं, जैसे स्टीविया है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो मीठा है बट उसके अंदर शुगर नहीं है, तो आप चाय में या दूध में।
1: और इसके अलावा सर हम फ्रूट्स भी तो ले सकते हैं जिनसे हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, जो
0: नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं, बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तो फिर भी आपको उसके बाद भी ब्रश तो करना ही है, ब्रश करना चाहिए।
1: तो साथियों ये था हमारा

0: आज का प्रोग्राम जो था प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज से जुड़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे रखें अपने मुंह के स्वास्थ्य को और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर। और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी डॉक्टर हरमीत सिंह जी ने, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें दी। और इसके साथ आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

जी सत श्रीकाल जी, नमस्कार ते आदाब दोस्तों। मैं जी आ गया जी, सुन रहे हो दुनिया दा सब तो वखरा ते सब तो टेढ़ा ते सब तो सुरीला या कदी कदी कहते बेसुरा शो, सिर्फ ते सिर्फ 102.7 FM रेनबो ते। कहते ने जिते म्यूजिक भी होंदा है, कॉमेडी भी होंदी ते इंस्ट्रूमेंट भी रो दिंदे ने। मैं हाँ जी तुहाडा हो दोस्त ते माइक दा मैजिशियन, आवाज़ां दा इलैक्ट्रीशियन ते जोक्स दा फुल टाइम सप्लायर। अज दा शो कहते एकदम खास, क्योंकि अज साडे स्टूडियो विच ना लाइक मी यानी कि पंजाबी संगीत का महान ज्ञानी एड तबला की तूफान दे, कहिंदे ढोलक दे डॉन ते हारमोनीयम की जिहड़ी हुईकन एक ही नाम उस्ताद तबला प्रसाद जी। माई सेल्फ तबला प्रसाद, पर दोस्तों कहते ना थोड़ा संभल के बैठ रहा, क्योंकि अज का शो घट ते म्यूजिकल एक्सीडेंट ज़्यादा लगता मैं। कहते अज के साडे लोगों को जो चैलेंज देना है ना, लाइक आओ जी कोई भी इंस्ट्रूमेंट चको तो बजा के दिखाओ। कहते हुण प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोगों को कहते पता ही नहीं होंगे कि इंस्ट्रूमेंट किदा पकड़ना, और कहते ना कोई तुंबी ना क्रिकेट बैट वांगू घुमा रहा होंगे। क्यों जी, ये तो है जी, कहते क्रिकेट बैट जिदा होंगे ना उदा तुंबी उदा घुमा रहा होंगे। कहते ने कोई अलगोजा नू जिहड़ा पाइप समझ के हवा जिहड़ी है हवा भर रहा होंदा उहदे विच। कहते ने कि कोई ढोल इन्ना जोर के बजा दिंदा ना, तो वह भी ढोल भी कहता कि भाजी मेरी की गलती सी। कहते ने जी जो साडे उस्ताद ना, जिहड़े साडे उस्ताद जी यानी कि मेरे उस्ताद जी कहते ट्रेनिंग देंदे सी ना, उन्हां दा भी स्टाइल कमाल हुंदा सी। कहते पुत्तर तबला बजाना है, लॉन्ड्री नहीं करनी, हारमोनीयम नू भी प्यार नाल छेड़ो। कहते स्कूटर जिहड़े ने स्टार्ट करन वाला बटन नहीं है। वेल शो शुरू हो चुका है, तो प्रोग्राम हैलो जलंधर। तो अज का जो सा प्रोग्राम है बड़ा खास हो लगे, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिना। चक्कर यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना ना ज़्यादा समझ आ जाता है कि होंगे कि अपना ना जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट होंदा हर बंदे दे घरे होंदा ही होंदा। तुसीं बहुत सारे देखोगे दीवारां ते लटके होंदे, फ्रेम तां लटके होंदे पर दीवारां ते ना इंस्ट्रूमेंट भी लटके होंदे। बस अज ना उतारां दा बेला आ चुका, चक्कर दा बेला आ चुका। कईआं दे घरे पेटी पई होंदी जिहनूं असीं हारमोनीयम कहिंदे आ जी, ओह चक लो, तबला चक लो, ताशा चक लो, मैं कहा जी सब कुछ चक लो, ते टेबल भी चक लो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हैगा। पर किसे ते गल ना चक्कियो कि थप्पड़ पै सकदे ने। बस जी चको अपना जी इंस्ट्रूमेंट ते अपने कोल रखो ते तुहाडे तबला पसाजी।

तबला प्रसाद तुहाडे नाल गलबात करेंगे तुहाडे तों इंस्ट्रूमेंट सुनूंगे। चलो जी नंबर नोट कर लो ते तुसी फोन करना है कि 0181234217 ते कॉल करो जी ते आपां गलबात करांगे ते तुहाडे कोल तुहाडे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सुनूंगे या तेरे घरे वे तुहाडे पे ना इंस्ट्रूमेंट। उह तों पहले एक सोहणा जिहा गाणा सुणदे आ जी।

0: हाँ जी, तो ही सुन रहे हो जी FM बैंड 102.7 चल रहे प्रोग्राम हेलो जलंधर विद तबला पर जैद जी, ढोल बजाओ माड़े जी जी। बस बस बस बस वेल देखो जी, इंस्ट्रूमेंट दा अज दिन है जी, ते अज गल्ला बातें करेंगे कि दिन है ढोलकी तंबूड़ा वजली हारमोनीयम नहीं तो कोई भी जेड़े चम्मच चक लो थाली चक लो असी, पर इंस्ट्रूमेंट अज तुहाडे तो असी जरूर सुनना है दोस्तों। वेल साडे नाल एक कॉलर जुड़ चुके ने जी। हैलो
1: हैलो
0: सर, सत श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा?
1: शरण, जलपुर जट्टा
0: तो। अच्छा जी शरण जी, की हाल चाल ने जी? इंस्ट्रूमेंट बजवाओगे फिर रखांगे जी। कितना केड़ा इंस्ट्रूमेंट है थोड़े कोल अज? अच्छा टूटी फुटी ढोलकी, बोल की बजाई दी होंदी मार के भी बजाई दी है? आए क्या बात है जी, एक भांडा केड़ा खड़काया वैसे मैं दसोंगे? परात खड़काती जी। अच्छा जी, परात दे उपर की खड़का रही, हाथ के अपना चम्मच चुम्मच? अच्छा जी, शुक्र तुसी दोबारा बजाता, नहीं तो मैं कह लगे तुसी ते किसे दे मुंह ते मार।

0: हां जी तुसे मेरी लगन लगी वे लगन लगी ऐसी तरीके ना साडे सरोते ना साडी लगन लगी हुई है। हेलो जी।
1: हेलो सर, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने जी?
1: बढ़िया जी, रौनक आ गई साडी है जी।
0: क्या बात है जी, क्या बात है जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी।
1: मेरे आदमपुर।
0: और जी की कर दी कुलविंदर जी?
1: बस काम पे बैठे थे, साडा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं।
0: अरे थैंक थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। केड़ा इंस्ट्रूमेंट बजाओगे कुलविंदर जी, पहले ये दसो आए तुसी।
1: इंस्ट्रूमेंट बस ढोलकी दा बना दी थोड़ी वाली।
0: अच्छा ढोलकी, किनू किनू बनाता ढोलकी जी तुसी?
1: फटे नो यार पता होंदा जी।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, क्या बात है जी। मैं क्या जी, एक बार शुरू हो जाए।
1: लो जी सड़ा।

0: गया, ढोल हो गया, बंदा हो गया, ये बजा सकते तुसी कि नहीं?
1: बस
0: हाँ ये तो है जी, खुश करने वाली गल्ला कर दे कि चल माड़ा मोटा कर दें, बंदा खुश हो जूगा। एक बार और हो जाए राकेश जी। चिड़िया घर आए हो जी?
1: बस फिर इतना ला लो
0: ऐसा, कि शेर दी सुना फिर।
1: शेर सुनाइए।
0: हाँ जी,
1: आपने उठाया हमारा फोन, आपके पास समय की कमी कम थी, जब हमारा नंबर लगा तो आपके पास वो फरमाइश ही कम थी।
0: अच्छा जी, मैं तो जी शेर दी आवाज गया, वैसे तू शेर सुनाता है
1: तो बड़ा शेर की हो सकता हूँ, दसो जल्दी जल्दी, तो अपन जेड़ा शेर लभ्या आप बोल दिता जल्दी जल्दी,
0: तो आवाज कट के था शेर दी, फिर
1: शेर दी आवाज।
0: हम्म,
1: डरियो ना फिर।
0: नहीं डरदा जी, तुम पानी पी लियो बस, ये नहीं डरिया, नहीं डराता
1: डराता बस, आप
0: रुक मैं डरन दो। थैंक यू, बचा हो गया, बचा हो गया जी मेरे शेर, शुक्र फोन ते सी जी।
1: टाइम पूरा आने लगा फिर, गाना पूरा आना जी तेरे
0: को, कोई गल नहीं, टेंशन को लेने जी, अगली शो चला दागे हैड़ा जी। ठीक है, ठीक है जी, अपना चंगा लगा राकेश कुमार जी तेरे नाल गलबात करके जी। हुण तुसी इदां करो, आवाजां सिखो सोहणियां सोहणियां, ठीक है जी, ते गल नूं जरा ध्यान नाल सुणिया करो।
1: मैं क्या टेंशन ही नाल तो आ तुसी इक वारी।
0: अच्छा जी, चलो ठीक है, आराम करो जी, एमी तड़े एमी गर्म हो रहे हैं, लगता तुहाडे सूरज हले उतरिया नहीं हैगा जी। चंगा जी, बाय बाय। हलो जी, प्रोग्राम चले, हैलो जलंधर ते, अज बहुत सारिया फरमाइशा सुनिया सी, इंस्ट्रूमेंट सुने, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुने, कई ने थाल बजाए, कई ने अपने पियानो बजाए, कई ने गिटार बजाए, तो कई ने बंदे भी बजाए। वैल वैल वैल, ये चीज़ा ना जिहड़ियां कदी कदी ना सानू जिहड़ियां आदतां साडियां वड्डे हो गए काम आ रही दस जाइया थानू, जिदा कहिंदे ना कईआं नूं इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना आते, उन्होंने अपने आप ने पट्टा दे हत्थ मार के इंस्ट्रूमेंट बजाते जी। वैल वैल वैल, दसो कोई चक्कर नहीं, एक सोहना गाना पेश कर दे, तो बाद आपां फिर गलबात करदे आं ते शो दा एंड करदे आं।

0: FM बैंड 102 शेरा साथ में का हर्ट्स। तो गाने तो बाद दोस्तों तुसी फिर तो जुड़ चुके हो अपने पसंदीदा प्रोग्राम प्रोग्राम युववाणी दे विच। तो दोस्तों हुण वेला हो गया है साडे इस प्रोग्राम दे विच अग्गे वधण दा। ते मैं रितिका दे नाल गल कर रहा सी कि किस तरह दुनिया दे विच वख-वख संस्थावां ने वख-वख ऑर्गनाइजेशनस ने या फिर वख-वख असी टीम्स कह दिंदे आ जो कि वर्ल्ड लैवल उत्ते जिहड़ी महामारियां हुंदे ने उस दे नाल लड़न दे लई जिहड़े आम लोकां ने उहनां दे लई जागरूकता करदियां ने, नाल ही नाल एक इदां दे कैंप्स भी लांदे ने जिस नाल उसकी अवेयरनेस भी फैलाई जा सके।
1: जी ते तुहानू पता है इसे दे नाल मैनू अज दा दिन पता लग गया, मैनू याद भी आ गया एकदम ही कि अज तां विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी है। ते ये हर साल जिवें कि शिक्षित है ही है कि 18 मई नू सैलीब्रेट किया जाता है। इहदा मेन मोटिव की है तुहानू पता है?
0: जी बिल्कुल दोस्तों, इसका जिहड़ा इस दिवस का मेन मोटिव ये है कि लोगों को जागरूक करना एड्स यानी कि HIV एड्स के बारे जानकारी देना, नाल ही नाल इहदे लक्षण या फिर तुसी किस तरह इस तो अपना बचाव रख सकते हो इन्हां बारे दसना।
1: जी इस दे नाल ही एक तरह ना डॉक्टर्स ते जिहड़े साइंटिस्ट दे नाल जिहड़े वॉलंटियर्स हुंदे ने उहनां नूं थैंक यू करन दे लई डे जिहड़ा है सैलीब्रेट किया जांदा है। ते दिन रात क्योंकि उह साडी इन्नी मेहनत करदे ने साडी लाइफ नूं बचाउण दे लई।

दिल तैयार ने ते जिंदगी नु कले लगाउन दा समा आ गया है। स्वागत है थोड़ा लव यू जिंदगी शो विच। वेल सशिकाल दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी कैसा सफर है जो हर रोज सानू कुछ ना कुछ सिखा जांदी है। कदे हसाउंदी है, कदे रोंदी है, कदे थका दिंदी है, पर फिर भी हर सवेर नवी आस नाल जगा दिंदी है। इसे सफर नु मुस्कान नाल कबूल कर दे, दे ना है लव यू जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी हमेशा साड़ी मर्जी मुताबिक नहीं चलती, पर यह जरूर साड़ी सोच के मुताबिक सोहनी बन सकती है। कई बार असी छोटिया गल्लां विच उलझ के वड्डी खुशी गवा लैंदे हाँ, ते कई बार एक छोटी मुस्कान सारा दिन सोहना कर जाती है। लव यू जिंदगी सानू जिहड़ी शो है ना, सानू इह दल याद दिलाउंदा है कि खुश रहन लई वड्डे कारण ही सही नज़रिया चाहीदा है। दोस्तो, इह शो उहनां लई है जो हार के भी मुस्कुराउणा जाणदे ने, ते जो टुट के भी अपने आप नूं जोड़ लैंदे ने, उहनां लई जो अज थके होए ने पर कल तो फिर उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिंदगी का सब तो वड्डा हुनर यही है कि हर हालात विच अपने आप नू खड़ा रहना, उत्थे रखना, खड़ा रखना। वेल दोस्तों, सुन रहे हो तुसीं प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश बहुत सारी गल्लां बातें करेंगे एंड जिंदगी बारे आज गल्लां बातें करेंगे बहुत सारियां। ते दोस्तों, प्रोग्राम ते विच तुसीं अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो कि थोड़ा किस बारे की थॉट है। जिदा अज असीं गल्लबात करांगे सबर बारे, उन्हां दे डीप च जाऊंगे कि सबर की हुंदा है, उन्हां दा उस चीज़ ना जाणू होवोंगे। पर उस तो पहला एक सोहना गाना थोड़े लई पेश करदा दोस्तों।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों जिंदगी बारे गल करते हैं सब तो पहला। ए जिंदगी, मैं तेनू प्यार करता हाँ, मैं तेनू प्यार करता हाँ, भावे तू कई बार बेरहम बन जाती है, भावे तू कई बार रस्ते औखे कर दिनी है, भावे तू कई बार रातां नू हंजुआ नाल पिजा दिनी है, फिर भी मैं तेनू प्यार करता हाँ, क्योंकि

कोई है जिसने मैनू सांह लेना सिखाया है, हंसना सिखाया है, डिग के उठना सिखाया है। तू ही है जिसने मैनू दुख का मतलब समझाया है, सुख की कदर करनी सिखाई। जो मैं छोटा सी तो मैनू लगता सी कि मैं जिंदगी सिर्फ एक खेड है, मेले हैं, गुड्डिया गुड्डे हैं। फिर थोड़ा वड्डा होया तो पता लगा कि जिंदगी इम्तिहान है, नंबर हैं, रिजल्ट हैं, उम्मीद हैं। जो तो जवान होया तो समझ आया कि जिंदगी चोणा हैं, फैसले हैं, रिश्ते हैं, टुटना बनना है। पर हुण जो तो मैं अपने दिनों वल पिछे मुड़ के देखता हाँ ना, तो समझ आता है कि जिंदगी इन्हें सब तो कुछ होर है। जिंदगी एक कहानी है जिसका लेखक मैं आप हाँ। कुछ पन्ने में स्याही नाल परे हैं, कुछ पन्ने हंजुआ नाल, कुछ पन्ने खाली छड़ दिते हैं, तां जो कल मैं कुछ नवा सीख सका। मैं तेनू प्यार करता हाँ जिंदगी, क्योंकि तू मैनू सवेर दिनी है। जो तो रात दे हनेरे तो बाद सूरज दी पहली किरण खिड़की चो अंदर आती है, तो मैनू लगता है कि तो फिर तो मैनू मौका दे रही है पुरानियां गलतियां सुधारन दा, नवे सुपने वेखण दा, किसे अणजाण नू मुस्कुराहट देण दा। तू मैनू ओह लोक दिनी है जो बिना कारण मेरी हाथ फड़ लैंदे हन। मां दी गोदी, प्यो दा मोढा, दोस्त दी हासी, अध्यापक दी चिड़क जिस विच प्यार लुकया हुंदा है। तू मैनू ओह रिश्ते देनी है जो खून नहीं दे, जो खून नहीं हुंदे पर रूह दे हुंदे हन। जो तो दुनिया मूह मोड़ लेंदी है तां यही लोग कहंदे हन कि असियां डरना। एहो कुछ पल, एहो कुछ चेहरे, एहो कुछ शब्द हन जिन्हां करके मैं तैनू प्यार करदा हां।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे तो रमनीश। दोस्तों गल कह रहे सी अपा अपने सबर दी। गल तो करनी पाती है दोस्तों, सबर दी चित है ना जी। गल करते हैं दोस्तों सब तो पहला कि सबर की है। सिर्फ उड़ीक नहीं, एक किरिया भी है। सबर का मतलब हाथ ते हाथ तार के बैठ जाना नहीं। पंजाबी सभ्याचार विच सबर नूं ना संतोख अते धीरज नाल जोड़ के देखा जाता है। यह एक सरगरम अवस्था है जिथे तुसी मुश्किल दे विच भी अपने काम लई जुड़े रहिंदे हो। किसान बीज जिस विच तुसी मुश्किल विच अपने काम नाल जुड़े रहिंदे हो, किसान बीज तो बीजण तो बाद ना जिहड़ा फसल की उड़ीक करता है, पर वह खाली नहीं बैठता। वह पानी देता है, नदीन करता है, राखी करता है। यही सबर का फलसफा है। कर्म करते रहना, फल की चिंता रब ते छड़ देना। दोस्तों तो आंदे कम ते सबर का सदियां पुराना रिश्ता। पंजाब की धरती मेहनत की धरती है। इत्थे किरत करो नूं पहला उपदेश मन्या गया, पर किरत दे नाल नाम जपो वंड छको दी भी जुड़िया गया। नाम जपना सबर सिखाउंदा है। जदों तुसीं रोज़ इक्को कम दोहरांदे हो ना, मन भटकदा है। सबर उस भटकन नूं काबू करके तुहानूं मौजूदा पल विच रखदा है। मिसाल लवो लाहौर दी। और लोहे नूं अग विच गर्म करदा है, हथौड़े ते कुटदा है, फिर ठंडा करदा है। जो एक सट तो बाद ही नतीजा चाहे तो कदे संद नहीं बनेगा। हजारा सट्टा वार वार अग विच तपाउणा, यह सबर है। अज के कारपोरेट कल्चर विच भी यही सच है। एक कोडर बाग ठीक करने लई घंटे लाउंदे हन, एक लेखक एक पैरां नूं 10 वार लिखता है, तुरंत सफलता की जिहड़ी भुख सबर नूं खा जाती है। दोस्तों आधुनिक युग च ना इंस्टेंट का जिहड़ा जहर ते सबर का इलाज यही है कि असी 2 मिनट के नूडल्स भी ना जिहड़े 10 मिनट की डिलीवरी एक क्लिक ते सफलता के युग में रहिंदे हां। सोशल मीडिया ने सानू ओवरनाइट सक्सैस दियां कहानियां सुना सुना के ना बेसबरा कर दिता है, पर हकीकत यह है कि वह ओवरनाइट सफलता के पिछे 10 साल का सबर होंदा है। दोस्तों 10 साल का काम विच सबर भी जिहड़ी घाट दे जिहड़े वड्डे 3 नुकसान यह होंदे ने कि पहला तो होंदा अधूरे काम। असी एक प्रोजेक्ट शुरू करते हाँ, नतीजा ना मिले तो दूजा फड़ लेंदे हाँ, ना पहला पूरा होंदा है ना दूजा। दूजी गल आती है मानसिक तनाव। हर पल नतीजा चाहना एग्जाइटी पैदा करता है, सबर मन नूं ठहर दिंदा है। तीजी गल है घटिया क्वालिटी। जल्दी करन दे चक्कर विच ना सी चलदा हाँ वाला काम करदे हाँ। सबर बेहतरीन वाला काम करवाउंदा है दोस्तों। अल दोस्तों तुसीं सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। ते हुण वेला हो चुका है 6:19 का, ते कुछ ही पलां विच तुसीं सुनोगे

0: डेजर्ट आ गया पर अपनी चैंपियन ही आई अजय तक।
1: बिल पर तो पहला तो आवेगी ना। सो गर्ल्स की हो रहा है?
0: बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
2: RBI कहता है कि अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी नु ना दियो। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल अति सिक्योर नेटवर्क पे करो। है कि ये खान दी चैंपियनशिप सी। RBI कहता है जानकार बनो सचेत रहो।
3: नमस्कार ए आकाशवाणी ए हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पश्चिमी एशिया संकट दरमियान सरकार ने कहा कि देश में सावनी रुत लई खाद की उपलब्धता 50% तो वधे। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष गैन सोध दे मद्देनज़र भारतीय चोण कमिशन दे अधिकारियों की एक टीम ने अज चंडीगढ़ च दौरा किया। पंजाब पुलिस वालों 3 वख-वख कार्रवाइयां विच 10 पिस्तौलों ते नकली भारतीय करंसी समेत 7 मुलजम गिरफ्तार। मौसम विभाग वालों पंजाब ते हरियाणा विच कई थावां ते जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट। आयुष मंत्रालय वालों अत दी गर्मी ते लू बारे एक व्यापक जनतक सेहत सलाह जारी। ते IPL क्रिकेट विच अज चेन्नई सुपर किंग्स दा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने कहा है कि देश में सावनी रुत लई खाद की उपलब्धता 50% तो वधे। पश्चिमी एशिया में हालिया गतिविधियां बारे अज नवी दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए रसायण ते खाद मंत्रालय के जॉइंट सकत्तर अपर्णा शर्मा ने कहा कि राज्यों में देश भर में 2 लाख मीट्रिक टन तो वध खाद उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमुख खादा की वध तो वध परचून कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया ते संकट के समय तो बाद घरेलू उत्पादन करीब 86.2 लाख मीट्रिक टन है ते 22 लाख मीट्रिक टन तो वध दरामद देश पहुंची है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय विच जॉइंट सकत्तर सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश विच तेल सोध कारखाने आम वांग काम कर रहे ने ते भारत कोल पश्चिमी एशिया संकट कारण दरामद विच रुकावट के बावजूद कच्चे तेल का काफ़ी भंडार है। देश विच पेट्रोल डीजल LPG ते कुदरती गैस का काफ़ी भंडार मौजूद है। उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर कोल किसी तरह की कोई थुड़ नहीं है पर अफवाह फैलन कारण देश के कुछ हिस्सों में लोगों वालों घबराहट खरीददारी देखी गई है। उन्होंने दसिया कि पछाने गए परचून LPG आउटलेटा से सप्लाई भरन लई तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन के ध्यान में आया कि चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपा ते ईंधन की राशनिंग की कथित अस्थाई शुरुआत संबंधी गुमराहकुन ते जाली खबर फैलाई जा रही ने। इन खबरों में स्थानक सप्लाई दियां सीमावां दा हवाला देंदे हुए 2 पहिया वाहनों 500 रुपये ते 4 पहिया वाहनों 1500 रुपये तक ईंधन सीमा तय किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस संबंध में चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर श्री निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ प्रशासन वालों पेट्रोल या डीजल की विक्री से कोई पाबंदी या सीमा लगाने संबंधी अजिहा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी दसिया कि चंडीगढ़ में पेट्रोल ते डीजल की काफ़ी उपलब्धता है। नागरिकों को बेनती की जाती है वो किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देन अते गैर जरूरी तौर पर ईंधन का भंडारण या वाधू खरीददारी ना करन। चंडीगढ़ प्रशासन संबंधित तेल मार्केटिंग कंपनियों नाल निरंतर तालमेल कायम करके स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है ता जो शहर भर में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्विघन उपलब्धता यकीनी बनाई जा सके। भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR करन दा ऐलान कीता है। कुल मिला के SIR अपने तीजे पड़ा तहत देश भर के 16 राज्यां ते केंद्र

0: ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 24,453 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ BLOs ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2,14,56,297 ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। इस संबंध में वक् वक् जिलों के चोण अफसर अपने अपने जिले दियां सारियां मानता प्राप्त सियासी पार्टियां के नुमाइंदियां नाल मीटिंग कर रहे हैं। इस संबंध में अज रूपनगर के जिला चोण अफसर कम डिप्टी कमिश्नर श्री आदित्य डेचलवाल, फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर कम जिला चोण अफसर श्री राहुल कुमार चाबा, श्री मुकतसर साहब के जिला चोण अफसर कम डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल, गुरदासपुर के जिला चोण अफसर कम डिप्टी कमिश्नर आदित्य उपल ने अपने जिले दियां सारियां मानता प्राप्त सियासी पार्टियां के नुमाइंदियां नाल मीटिंग की थी। श्री उपल ने दसिया कि वोटर सूचियां की विशेष गहन सोध मुहिम का मुख्य उद्देश योग नागरिकां दे नाम वोटर सूची में शामिल करना ते गलत या डुप्लीकेट एंट्रियां नूं हटाउणा है। अज दी मीटिंग बारे जानकारी दिंदिया उन्होंने दसिया,
1: ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, रे मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों गल हो रही ही सबर ते, अपा थोड़ा रिवाइज करते हैं कि अपा काम विच जिहड़ी सबर की घाट जिहड़ा तीन वड्डे नुकसान जिहड़े दसे सीगे ओह है अधूरे काम, मानसिक तनाव ते घटिया क्वालिटी। जापानी फलसफा काइजेन पाव लगातार छोटा सुधार सबर की ही उपज है। टोयोटा दे 50 साल सबर नाल छोटे छोटे जिहड़े सुधार करके दुनिया की सब तो भरोसेमंद कार बनाई। दोस्तों सबर दे तीन पड़ा जिहड़े काम विच किवें लागू करिए। पहला पड़ा पता किहड़ा हुंदा है, शुरुआत दा सबर, यानी कि बीज बीजना। कोई भी नवा हुनर, कारोबार जा नौकरी शुरू करते समय मन विच डर हुंदा है कि मैं कर पावांगा। ये वो समय है जो तो सबर दा मतलब है रोजाना हाजिरी लगाना। लेखक स्टीफन किंग ने 30 बार रद्द होण तो बाद पहला नावल छापिया ते वो पहले रद्द तो बाद रुक जांदा तां दुनिया एक महान लेखक गवा लैंदी। काम विच शुरुआत दा सबर मांगदा है। 90 दिनां तक नतीजा मत देखो, सिर्फ काम करो। दूजा पड़ा दोस्तों हुंदा है विचकारला सबर, यानी कि पठार पार करना। सारे कम्मां विच एक पठार आउंदा है। शुरू विच तेज सिखण तो बाद तरक्की रुक जांदी है। जिम जाण वाला 2 महीने बाद देखदा है कि भार घट नहीं हो रहा। कारोबारी देखदा है कि विक्री एक थां ते रुक गई। ये सब तो खतरनाक समा है। इत्थों 90% लोग ना हार मान लेंदे हन। सबर इत्थे कहिंदा है कि पठार दा मतलब है तुसी अगले पद्धर लई तैयार हो रहे हो। बस रुको ना, इस पड़ा दे

दोस्तों तुम सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी। तो दोस्तों कल चल रही सबर ते हम गल करते कि सबर किवें सीखिए। ए चार अमली तरीके ने। पहला है बोरिंग नू गले लगाओ। समझ रहे हो ना दोस्तों, बोरिंग नू गले लगाओ। महान काम बोरिंग दोहराओ नाल बनते हैं कहते। रोज 30 मिनट कोई एक काम बिना फोन ते करो, मन भटकेगा, वापस लियाओ। यही सबर की भी जिम है। उस तो बाद गल आती है म्याद वधाओ। अपने टीचिया का समा सीमा 3 गुणा कर दो। जो लगता है 6 महीने विच कारोबार चलेगा तो 18 महीने की योजना बनाओ। इस नाल तुरंत नतीजे

दबा कटेगा दोस्तों। उत्पादन की गल हाले नहीं दाभ्यास, हाले नहीं दाभ्यास, मतलब हाले नहीं दाभ्यास करना आप कहते ना, जो तो मन कहे बस होर नहीं तो पांच मिनट होर काम करो, यही पांच मिनट थोड़ी सबर मांसपेशी बनाते हैं। कुदरत तो सीखो कि बांस चार साल जमीन के हेठा जड़ा बनाता है, पंजवें साल 90 फुट उच्चा हो जाता है। कि वह चार साल बेकार सन? नहीं, वह सबर दे साल सन दोस्तों। आखिरी गल करते हैं कि सबर का जिहड़ा इनाम है सिर्फ सफलता नहीं सुकून है। सबर का सब तो वड्डा इनाम पैसा या नाम नहीं होंदा, वह सुकून होंदा है दोस्तों। जब तुसी जानते हो कि तुसी अपना 100% दिता है तो नतीजा जो भी होवे मन शांत रहिंदा है। बाबा नानक जी ने कहा है कि काली खाई किछ हथुए दे, नानक राहू पछाणी सही। काल यानी मेहनत, ते उस मेहनत विच सबर छुपया है। अज तो अपने काम नू सबर दी जड़ी नज़र नाल वेखो। पुछो कि मैं किसान वांग बीज बीज के रोज पानी दे रहा हाँ, जादू दी छड़ी दी उड़ीक कर रहा हाँ। याद रखो दोस्तों कि पहाड़ भी बूंद बूंद पानी दे सबर नाल कट्टिया जांदा है। थोड़ा काम, थोड़ा सुपना, थोड़ी मंजिल सब सबर मांगते हैं दोस्तों। अते जिस कोल सबर है समा उस दे नाल ही है।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों एक सबर दी जीत ते कहानी सुनाना। एक कहानी है बीबी जसवीर दे टाबे नाम तो। जसवीर कौर का जन्म अमृतसर के एक छोटे जिहे पिंड विच होया। पति की मौत तो बाद 35 साल की उम्र विच ओह तीन बच्चों नाल इकली रह गई। घर विच ना जमीन सी ना पैसा, सिर्फ एक हुनर सी रोटी गोल पकाउण दा। पिंड वाले कहिंदे, बीबी तेरे हाथ दी रोटी खा के ना बंदा रज जांदा। जसवीर ने हिम्मत कीती, घर दे बाहर बोड़ हेठां चूल्हा बालिया, चार मंजे डाए ते जसवीर दा टाबा शुरू कर। पहले दिन कुल विक्री 40 रुपए, दूजे दिन मीह पै गया, सारा समान पिज गया। गुआंढियां ने कहा, भैणे यह काम ना औरतां दा नहीं, बच्चे पालने हन तां किसे दे घर भांडे मांज लै। पर जसवीर ने ना सबर नहीं छड्डिया। उसने हर सवेरे 4 बजे उठ के आटा गुनना शुरू किया। साग खेतों तोड़ के लियाउंदी, लस्सी रिड़कदी। उसका नियम सी कि जो भी गाहक आवे पहला पानी पुछना, फिर मुस्कुरा के रोटी परोसनी। 6 महीने लंघ गए, कमाई सिर्फ दाल रोटी जोगी सी। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर आया, खाना खा के बोलिया, भैन जी 15 साल हो गए सड़क ते, पर एडी स्वाद माँ की रोटी विच भी नहीं आउंदा सी। उसने अपने सारे साथियों नूं पता दे दिता। हौली हौली ना बोहड़ हेठ ट्रक रुकन लगे। जसवीर ने कदे क्वालिटी नाल समझौता ना किता। जदों घ्यो महंगा होया उसने रोटी छोटी नहीं की, सगो अपना एक वक्त का खाना छड़ दिता। बच्चे कहिंदे, बीबी तू तो क्यों भुखी रहनी है? वह हस के कहती है, पुत जिस दिन गाहक का भरोसा टुट गया ना उस दिन ढाबा बंद, सबर नाल बीज बीजता फल रब देगा। 3 साल बाद उस बोहड़ की थां पक्की इमारत खड़ी सी, जसवीर का ढाबा हुण 20 पिंडा विच मशहूर सी। उसने 5 होर औरतां नूं काम ते रख्या, सब विधवा जा तंगी जिहड़ी तुरशी वालियां। अज उसका ढाबा वड्डा पुत होटल मैनेजमेंट कर रहा है कि धी जिहड़ी है वह नर्स बन गई है। पिछले साल डीसी साहिब खुद ढाबे ते आए, पुछया, बीबी तेरी सफलता दा राज की है? जसवीर ने तवा फेर दिया, कहा, साहब राज इक्को ही है, वो है सबर। जदों कोई नहीं आउंदा सी उदों भी चूल्हा बालिया, जदों घाटा पैंदा सी उदों भी घ्यो घट ना किता। कम नाल इश्क करो, उड़ीक करनी सिखो, उपर वाला देर कर सकदा हनेर नहीं करदा। अजबोड़ अजे भी उत्थे है, उसकी छां है।

दोस्तों तुम सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों 6:53 हो चुके हैं, बस कुछ पल हैं बस। तो पहले एक छोटी जी कहानी थानू जरूर सुनाना चाहूँगा कि एक कहानी है टुट्टी साइकिल ते उड़ान। टुट्टी साइकिल तो उड़ान हरमन की कहानी। हरमन सिंह मोगा जिले के एक छोटे स्कूल में पढ़ता सी। दसवीं विच उसके 45% जिहड़े 45% नंबर आए। मास्टर ने सारी क्लास सामने कहा, हरमन तू तो खेता वाला ही बनेगा, पढ़ाई तेरे वास दी नहीं। घर आके वह खूब रोया। प्यो ने पुरानी साइकिल वल इशारा करके कहा, पुत इसका एक पैडल टुटा है पर फिर भी यह तुरदी है। तू भी एक पासे कमजोर सही, दूजे पासे जोर ला। हरमन नू कंप्यूटर का शौक सी पर घर विच कंप्यूटर कित्थे। और रोज़ 12 किलोमीटर टुट्टी साइकिल दे स्कूल दे लैब वाले जिहड़े सर नू मिलन जांदा सी। सर ने देखे कि मुंडा 2 घंटे खड़ के सिर्फ वो दूजे बच्चों नू कम करदा देखदा रहिंदा। एक दिन सर ने पुछया, तू खुद क्यों नहीं चलाउंदा? हरमन ने हौली जिही कहा, सर मेरी वारी कदे नहीं आउंदी, सारे तेज बच्चे पहला बैठ जांदे हन। सर ने उसनू स्कूल बंद होने तो बाद 1 घंटा देना शुरू कर दिता। बिजली जांदी तां हरमन मोमबत्ती दी लौ विच किताब पढ़दा। उसने सोशल मीडिया ते HTML सीखना शुरू

दोस्तों दोस्तों इसी आज द प्रोग्राम लव यू जिंदगी आई होप तुहानू अच्छा लग्या होगा। दोस्तों आखिर च यही कह के जाऊंगा कि जिंदगी पूरी नहीं होंदी पर सोहनी जरूर बनाई जा सकती है। आओ इसनू मिलके कहिए लव यू जिंदगी। कहिंदे ने चाह दी इक चुस्की प्यारियां गल्लां ते जिंदगी नाल प्यार। एसी आज द लव यू जिंदगी स्टे ट्यून गाइज। आई होप मैं फिर दोबारा जल्द ही आऊंगा, थाना गल्ला बात करूंगा, बहुत सारी कहानियां पेश करूंगा। स्टे ट्यून गाइज।

नमस्कार, शाम दे वजगे ने साथ ते पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। पछमी एशिया संकट दरमियान सरकार ने कहा है कि देश विच सौनी रुत लई खाद की उपलब्धता 50% तो वध है। देश विच पेट्रोल डीजल अते एलपीजी अते कुदरती गैस का काफ़ी भंडार है। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप अते ईंधन की राशनिंग की कथित अस्थाई शुरुआत संबंधी गुमराहकुन अते जाली खबर का खंडन करदे कहा कि पेट्रोल ज डीजल की विक्री से कोई खास पाबंदी या सीमा लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध दे मद्देनज़र भारतीय चोण कमिशन दे अधिकारियों की एक टीम ने अज चंडीगढ़ का दौरा किया। पंजाब पुलिस वालों 3 वख-वख कार्रवाइयों विच 10 पिस्तौलां 2 किलोग्राम तो वध हैरोइन अते नकली भारतीय करंसी समेत 7 मुलजम गिरफ्तार किए गए ने। पंजाब के राज्यपाल श्री गुराब चंद कटारिया ने नाभा नेड़ले पिंड खोख कोटली स्थित निर्मल कुटिया विखे यंग नाभा एसोसीएशन वालों करवाए गए स्कूल बैग वंड समागम की शलाघा की है। गैंगस्टर ते वार मुहिम के 118वां दिन पुलिस टीम वालों 271 व्यक्तियों 3 हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। हुण तक कुल गिरफ्तारियों की गिणती 30,250 हो गई है। लोग एंटी गैंगस्टर हैल्पलाइन नंबर 9396493946 राही गुप्त रूप में लोड़ींदे अपराधियों ते गैंगस्टरां बारे सूह दे सकते हैं। मौसम विभाग वालों पंजाब अते हरियाणा विच कई थावां ते जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आयुष मंत्रालय वालों अत दी गर्मी अते लू बारे एक व्यापक जनतक सेहत सलाह जारी की गई है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: ड्यूटी तो करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाइए, जला दीजिए, जिस तरह अदालत जाती है उसी तरह जला दीजिए। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए, बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसान की पूजा करके रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ तो सही है, जला दीजिए, चलो भाई लो लो, जला तो बांधो इसे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रात का खेल सिर के सच्ची दाना नगनी होती नहीं बनेगा, बल्कि मेरे बेटे के क्रोध की आग से जसपाल राणा से लेकर कुछ तक सब बनेंगे।
3: बिल्कुल जी, पहचान लिया कि नहीं? जी हाँ, जेकर नहीं पहचाने, साढ़े बहुत सारे दर्शकों ने पहचान लिया होना। इन्हां तो बिना यार पंजाबी फिल्मां भी कई अधूरियां रहियां ने, और इन्हां तो बिना बहुत सारिया बॉलीवुड फिल्मां उस दौर दे विच जिन्हां ने बहुत सारा नामना खटिया, चाहे गल शाहरुख खान साहब होना दी कर लीए, सलमान खान होना दी कर लीए, अजय देवगन होना दी कर लीए, मतलब बहुत सारिया फिल्मों के इन्हां ने वह किरदार निभाया जो अज भी ना भुलण योग ने। जनाब फरीदा जलाल जी, इन्हां दा एक प्यारा डायलॉग तुसीं सुणिया, किस कदर किरदार दे विच खुब के जो ये डायलॉग डिलीवरी करते सी, हमेशा इन्हां दे काम नूं सराहिया गया। फरीदा जलाल भारतीय सिनेमा बॉलीवुड की एक अजिही दिग्गज अते बेहद हरमन प्यारी अदाकारा हन, जिन्हां ने पिछले 5 दहाकियां तो वध समय दे विच अदाकारी दे नाल दर्शकां दे दिलां ते राज कीता। उन्हां ने फिल्मी पर्दे ते एक वफादारी सहेली वफादार सहेली, एक प्यारी भैन, भावुक पत्नी अते सब तो वध एक लाडली ते ममता नाल भरपूर माँ, दादी जां नानी दे किरदारां नूं इन्नी शिद्दत दे नाल निभाया, वो हर भारत

वाह क्या बात है, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। जो अमिताभ बच्चन साहब होना दे नाल किरदार निभाया फरीदा जलाल जी ने, हुण मुख अभिनेत्री वजों चुनौतियां की रहियां फरीदा जलाल जी दी। कहते बॉलीवुड दे विच एक रिवायती धारणा रही है कि जिस अधिकार अदाकारा नूं एक वार भैण जां सहेली दे किरदार दे विच वेख लिया जावे उस मुख अभिनेत्री दे रूप दे विच उस नूं स्वीकार करना बहुत मुश्किल हुंदा है। फरीदा जलाल हुणा नाल भी कुछ अजिहा ही होया। उन्हां दी खूबसूरती, दमदार आवाज़, शानदार अदाकारी दे बावजूद उन्हां नूं बहुत घट फिल्मां दे विच मुख अभिनेत्री दे बनण दा मौका प्राप्त होया। उन्हां दीआं कुछ फिल्मां जिवें जीवन रेखा विच मुख भूमिका इन्हां ने निभाई, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस ते कुछ वड्डी सफलता हासिल ना कर सकी। पर फरीदा जी ने हार ना मनी। उन्हां दा मनना सी कि किरदार छोटा जां वड्डा नहीं हुंदा, अदाकारी वड्डी हुंदी है। जी हाँ, एक साडे लई मोटीवेशन दा भी काम करदा है। उन्होंने कहा कि जेकर उन्नी देखा जाए कि 1990 का दहाका फरीदा जलाल जी के करियर का बहुत सुनहरा सी। कहना तो गलत नहीं होगा कि इस दौरान भारतीय सिनेमा बदल रहा सी, परिवारक फिल्मों का दौर वापस आ रहा सी। फरीदा जलाल जी ने इस दौर दे विच माँ दे किरदार की नवी परिभाषा बदल दिती। सब तो बेस्ट फिल्म उस दौर की अज भी जो लोगों की पसंद है, DDLJ दिल

वाह जी वाह, क्या बात है जी। फरीदा जलाल जी दियां फिल्मां यादगार बहुत नहीं, और इसे तरीके दे नाल इन्हां बारे गलबात भी करते रहेंगे, तो प्रोग्राम मेरे ख्याल ना इसे तरीके दे नाल चलता रहेगा। एंड इन्हां दियां कुछ होर फिल्मों के बारे वाल गलबात कर लेने कि पुरस्कार ते सम्मान की गलबात करते हैं कि किस तरीके दे नाल इन्हां ने किस फिल्म के लिए इन्हां नूं फिल्म फेयर अवार्ड मिले, किस दे लई इन्हां नूं सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुंदा है। फिल्म मजबूर जो 1975 दे विच आई सी, उस दे लई इन्हां नूं सपोर्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार का इन्हों फिल्म फेयर प्राप्त होंगे। फिर उस तो बाद फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दे ले।

0: माँ।
1: छोड़ दे मुझे।
0: देख अगर तू रूठी तो मेरी भूख गई।
1: जा जा छोड़ दे मुझे।
0: जा। क्या हुआ?

0: बहुत ख्याल करता है मेरा।
1: तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता।
0: अरुण चल, वो शीला आई थी।
1: कौन शीला?
0: अरे वही तुम्हारे कॉलेज वाली, उसका जन्मदिन है ना, उसके घर पे पार्टी है।
1: मैं नहीं जाऊंगा।
0: क्या?
1: नहीं माँ, तुझको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा।
0: नाटक मत कर।
2: हाँ जी, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर देते रेनबो चैनल तुसी ट्यून कर लिया ते इस दे नाल थोनू पता ही है दूजी एक्ट्रेस कमाल दी अदाकारी जिन्होंने मां दा किरदार वड्डे पद्धर दे उत्ते इस तरीके दे नाल निभाया कि इन्हां तों बिना फिल्मां तां पूरियां ही नहीं हो सकदियां सी। मतलब लीड एक्टर एक्ट्रेसिस नूं चुन लिया जांदा सी, पर जदों मां दी गल हुंदी सी पहला असीं गलबात कीती फरीदा जलाल होणा दी, अते उस तों बाद रीमा लागू जी। हमेशा इन्हें तो यह गल लागू होंगी सी कि इन्हों तो परफेक्ट कोई किरदार ये निभा ही नहीं सकता। अजय देवगन होना की जेकर गल की जाए इस तो इलावा जो बेस्ट किरदार इन्होंने निभाए, कहते रीमा लागू जी भारतीय सिनेमा जगत के मराठी रंगमंच की अजिही महान अदाकारा हन जिन्होंने परदे ते माँ के किरदार को बिल्कुल नवे रूप के पेश किया। 1980-1990 के दहाके जो बॉलीवुड परिवारक रोमांटिक फिल्मों का दौर शिखर से रीमा लागू जी ने एक अजिही माँ की भूमिका निभाई जो ना सिर्फ प्यार अते ममता दे नाल भरपूर सी बल्कि आधुनिक समझदार अते अपने बच्चों की सब तो चंगी दोस्त भी सी। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त अते माधुरी दीक्षित वर्गे सुपरस्टारां दी परदे ते माँ बन के उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह बॉलीवुड के इतिहास के विलखण है। हाँ, गलबात असी कर रहे हैं रीमा लागू होना के बारे, उन्होंने जिंदगी के बारे। तो सब तो पहला असी गल कर लें कि रीमा लागू होना का जन्म 21 जून 1958 में मुंबई दे विच, उस वेले दे नाम दी गल करिए तां उस वेले बंबई किया जांदा सी मुंबई नूं। उन्हां दा बचपन दा नाम नयन भड़फड़े सी। उन्हां दा परिवारक पहले ही कला दे अदाकारी दे खेतर दे नाल जुड़िया होया सी। मां दी प्रभाव दी जेकर गल करिए तां उन्हां दी माता मंदाकिनी भड़फड़े मराठी रंगमंच थिएटर दी इक मशहूर अदाकारा सन। घर विच कलात्मक माहौल होण कारण रीमा जी बचपन तो ही अदाकारी की उन्होंने गुड़ती प्राप्त होंदी है। फिर उस तो बाद अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई हजूर पागा स्कूल तो प्राप्त की, उस तो बाद स्कूल के दिनों दौरान ही अदाकारी ते प्रतिभा उन्हां दी दिसण लग पैंदी है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई खत्म करके पेशे तौर पर थिएटर विच काम करना फिर शुरू कर दिता। इस तरीके दे नाल इन्होंने अपनी जिहड़ी है एक्टिंग की करियर भी शुरुआत की। होर कुछ इन्होंने किवें प्राप्त किया, होर कुछ इन्होंने किहड़ियां वड्डियां फिल्मां कीतियां वो भी सारा कुछ दसांगे। तां तक लई बने रहो साडे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते। एक होर प्यारा जिहा गीत

आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कुछ कुछ होता है, जिस दे विच असी बहुत सारिया फिल्मों दे विच इन्हां नूं वेखदे हैं जो माँ का किरदार इन्होंने निभाया। मेरे ख्याल ना इन्हां ने जो किरदार निभाया अज भी ना भुलण योग है। तो मैं कहना कि जे ना भुलण योग है तो विजय पथ जो इन्होंने फिल्म निभाई अजय देवगन होना दे नाल, बहुत सारिया फिल्मां अजिहियां कीतियां जो अज भी मील का पत्थर साबित हो रही ने। रीमा लागू जी के काम में साडे वालों यानी कि 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर के वालों इस तरीके सल्यूट है और इन फिल्मों इसी तरीके याद किया जाएगा। तद तक लिए बने रहो साडे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर के उत्ते। जिनी देर तक इन्हां दीआं होर गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करदे हां, इन्हां दी फिल्म का एक प्यारा जिहा गीत तुहाडे नाल सांझा करदे हां।

हाँ जी यार, FM रेनबो, आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल दे उत्ते मैं तुहाडा मित्र आरजे परविंदर प्रोग्राम लैके हाजिर हो चुकिया जी। किहड़ा? हाँ जी, मसाला मिक्स। ते मसाला मिक्स प्रोग्राम दे विच ना अज सारा कुछ असीं मिक्स ही कर देना, यानी कि खिचड़ी बना देनी हर चीज़ की। एंड उस दे नाल तुहानूं दस दईए कि किसी चीज़ की तुहानूं कोई भी जिहड़ा है कमी महसूस ना हो, तो एक एक करके बहुत सारी इनफॉर्मेशन, बहुत सारिया गल्लां, बहुत सारिया थोड़े काम दियां चीज़ां, वो सारा कुछ लैके हाज़र होवांगे। तद तक दे लई एक प्यारा जिहा गीत लैके मैं हाज़र होना, दैन फिर उस तो बाद करना की है बस, एक तो बाद इनफॉर्मेशन तुसीं इंजॉय करनियां ने। बने रहो साडे नाल 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते। एक प्यारा जिहा गीत, दैन फिर उस तो बाद इनफॉर्मेशन, बहुत सारिया गल्लां दा पिटारा।

हाँ जी, मैं कह जी स्वागत है एक बार फिर तो मसाला मिक्स प्रोग्राम दे विच। मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर एक बार फिर तो इस्तकबाल करदा जी। ते मसाला मिक्स प्रोग्राम दे विच तुहानू बहुत वड़िया इन्फॉर्मेशन्स थोड़े नाल सांझियां कीतियां, उम्मीद है थोड़ी निजी जिंदगी दे विच काम आणगियां। हुण असीं गल करदे हां एक होर इन्फॉर्मेशन थोड़े नाल मिक्स करन जा रहे हां, पर वो खबर तो अलग है, थोड़ी हेल्थ तो अलग है, थोड़े मूड नूं बदलन वाली चीज़ है। यानी कि मौसम जिस तरीके का हो रहा है कि गर्मी की छुट्टियां आ रही ने, इस दे असीं की करते हैं घूमण चले जाने। तुहानू पता कि पंजाब दे विच महाभारत काल दे बहुत सारे अजिहे थां ने जिस दे विच महाभारत दा बहुत वड्डा योगदान है। महाभारत दे अज्ञातवास दे दौरान जो पंज पांडव सीगे उन्होंने पंजाब दे विच वी, मतलब उस टाइम उसका नाम शायद पंजाब नहीं सी, पर उन्होंने जिहड़ियां रचनावां कीतियां ने वह पंजाब दे विच मौजूद ने। महाभारत नाल जुड़े पांडवों के कई प्राचीन मंदिर मनिया हुई थावां जो लोक कथावां अनुसार पांडवों के अपने अज्ञातवास या वनवास दौरान इन्हां थावां ते समां बिताया गया, तो बहुत सारिया प्रसिद्ध थावां ते ये मंदिर जिहड़े हन अज भी सुशोभित ने। कहिंदे बठिंडा इलाके दे विच एक पांडवा टैंपल है जो पुराने पांडवों के नाल जोड़े जाते हैं, लोग मानते हैं कि इत्थे पांडव रहे सन। दूजा मंदिर है पांडव सरोवर तरन तारण नेड़े। इस सरोवर पांडवों के नाल संबंधित मनिया जाता है, कहा जाता है कि पांडवों ने इत्थे इशनान किया। तीजा नंबर है पंच पांडव मंदिर होशियारपुर के कई पहाड़ी इलाकों के पांडवों के नाम नाल मंदिर के गुफावां मशहूर हैं जिथे बहुत लोग वड्डी गिणती दे विच नतमस्तक होने के लिए पहुँचते हैं। रूपनगर रोपड़ दे विच प्राचीन किले अते ढांचे पांडव काल दे नाल जोड़े जाते हैं जिथे अज भी वो यादा मौजूद ने जो पांडवों ने बनाई हुई सन। एक बहुत ही मशहूर मंदिर है हिडिंबा देवी टैंपल, हालांकि ये पंजाब दे विच नहीं है पर पंजाब दे लोग पांडवों के नाल जुड़िया होया ये मंदिर अज भी इस नूं मानते हैं। ये भीम अते हिडिंबा दे नाल संबंधित है। पठानकोट दे विच सुशोभित है पठानकोट दे विच पांडव गुफा। पठानकोट अते शिवालिक दीआं पहाड़ियां विच इलाकियां दे विच गुफावां अते जिथे पांडवों ने अज्ञातवास दौरान जोड़ियां जांदियां ने। कहा जाता है कि इत्थे मुक्तेश्वर महादेव टैंपल मंदिर विराजमान है, इस दे नाल नदी है और इस थां दे उत्ते बहुत सा वड्डा मेला लगता है शिवरात्रि वाले दिन और बहुत वड्डी गिणती दे विच संगत इत्थे नतमस्तक होने के लिए पहुँचती है। इस तरीके दीआं होर जानकारियां थोड़े लिए लैके आ रहा है थोड़ा मित्र आरजे परविंदर। अगली कि जानकारी हो सकती है सेहत के रिलेटिड, अगली जानकारी कि हो सकती है थोड़े घूमण फिरन के रिलेटिड, या फिर पंजाब के खाने कि होर मशहूर होंगे ने जोड़े कि बहरों आके साढ़े विदेश तो सैलानी आके पंजाब इंजॉय करते हैं, या फिर एक हासे की गल भी हो सकती है। इस दे नाल साढ़े नाल तुसी बने रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते। एक होर प्यारा जिहा गीत दैन उस तो बाद मसाला मिक्स दे विच मसाला नवा मिक्स करांगे जनाब।

हाँ जी, मुबारक बहुत बहुत मुबारक नहीं सब नू 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते। ते ओ तू कौन आ गया? मालिक, हम एक बात बोलें। ओ भरावा तू करे रह, मैं इतना करे मुखाते बोना। मालिक एक ठो बात बोलना है। मैं शो करन देंगे कि नहीं करन देंगे? अजी एक बात बोलने दीजिए ना। हाँ चल कर गल, की कहना चाहना? एक हम बात बताएं रेडियो पे, तू रेडियो।

0: करेगा?
1: नहीं देखिए ना, मसाला मिक्स प्रोग्राम का चल रहा है, हमको भी थोड़ा मिक्स कर लीजिए, हम कहते हैं मालिक। अच्छा जल्दी बोल की गाना चुना, एक ठो बात बोले पाजी, जल्दी बोलो, मैं अगे गाने चलाने ने, मैं मसाला मिक्स प्रोग्राम कर रहे हैं। मसाला मिक्स में हम एक बात मिक्स करना चाहते हैं भाई, चल बोलना जल्दी बोल। एक ठो बात ये है, थोड़ा दिन पहले ना बहुत तेज आंधी चला था, तो आंधी में ना हमरे कमरे पे जहाँ पे आप सोने को दिए हैं हमको, वो छत के ऊपर ना एक ठो पाए टूट के आ गया है। तो हम सोच रहे हैं, और की सोचन डे तू, हम ही सोच रहे हैं कि उस टाइम तक जब तक दूसरा आंधी नहीं आता है तब तक का इंतजार करें और कि नया टी शर्ट खरीद के ले आए। मतलब तू ये दसन ली इतने आया? तू जाके नवी टी शर्ट ले ला मालिक। हाँ हम सोच रहे हैं कि नायका आंधी का इंतजार कर लेते हैं। यार तू मेरे तांग ना आ रहे, तू जाके जो दिल करता वो कर ला। मैं कहना तू नवी टी शर्ट ले ला जाके आपे, तू अगली नेरी का इंतजार ना कर। देख हुण पता की होंदा ऐदा करन दे नाल ना बाकी लोग भी तंग होंदे आ। मैं कहना तू जाके टी शर्ट ही नवी लै ला, देख आ भी असर लापे तेरी गल सुन के। मालिक आप परेशान कर रहे हैं हमको, तो इन्नी देर तक तू की करन दिया मैनू है? मैं चंगा भला प्रोग्राम करन दिया ही आके, वेच आके मैनू कहन दिया मैं आ लै लिया, मैं वो लै लिया, नेरी आ गई, जाऊँगा कि नहीं हूँ जाऊँगा? मालिक हुण की हो गया, एक तो टी शर्ट खरीदवा दीजिए ना, नायका आंधी पता नहीं कब तक आएगा। मैं इनू माड़ा जो संभाल के उन्होंने घर छड़ के आना, तद तक लिया तुम दूजा गाना इंजॉय करो। मैं कहना जिमें जाके आना तो अगली इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें दसागा, इनू मैं घर छड़ के आना, इन्हें हूँ तंग करना। मालिक हम नहीं जाएंगे। तू तो किदा नहीं जाना, आ गाना सुनो जी।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हाँ जी मैगा जी 102.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे सी मसाला मिक्स ते एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन जो थोड़े नाल शेयर करन जा रहे हैं। कहिंदे राजस्थान दे विच एक मंदिर स्थित है जैसलमेर दे विच भारत पाकिस्तान सरहद दे उत्ते तनोट माता मंदिर है। बहुत चमत्कारी मंदिर है ते पंजाबी सभ्याचार अते फौजियां दे विच इस मंदिर दे पति

नमस्कार, रात दे बज के 9 ते पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नॉर्वे दे प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर ने उसलो विच वफद पदरी गलबात की। गलबात दौरान दोवें नेतावान ने दुवले संबंधा के समुचे पहलुआ की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ा दे विच कल इटली के दो दिन के दौरे तो रोम पहुँचे। सीनियर कांग्रेसी नेता वी डी साथीसन ने अज केरलम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी, उन्होंने भी होर मंत्रियों भी सहु चुकई गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले में हूँ

तक 10 मुलजमान गिरफ्तार किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला भी एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपा ते ईंधन की राशनिंग की कथित अस्थाई शुरुआत मुहिम संबंधी गुमराहकुन ते फर्जी खबर का खंडन करदे कहा कि पेट्रोल ते डीजल की विक्री ते कोई पाबंदी जां सीमा लाउण संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध के मद्देनज़र भारतीय चोण कमिशन के अधिकारियों की एक टीम ने अज चंडीगढ़ का दौरा किया। पंजाब पुलिस वालों वख-वख कार्रवाइयों विच 10 पिस्तौलां 2 किलोग्राम तो वध हैरोइन नकली भारतीय करंसियां समेत 7 मुलजम गिरफ्तार किए गए हैं। गैंगस्टर ते वार मुहिम दे विच 118वें दिन पुलिस टीमों वालों 273 व्यक्तियों को 3 हथियार समेत गिरफ्तार करके जिस नाल कुल गिरफ्तारियों की गिनती 30,250 हो गई है। लोग एंटी गैंगस्टर हैल्पलाइन नंबर 93-946-93-946 राही गुप्त रूप दे विच लोड़िंदे अपराधियों ते गैंगस्टर बारे सूह दे सकते हैं। पंजाब समेत उत्तरी भारत विच गर्मी का कहर लगातार जारी है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।

0: तुम
1: पहले तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
2: मैं लगता है साढ़े प्यारे प्यारे स्रोते जिहड़े हैगे ना बहुत ज़्यादा साढ़े ते मेहरबान होए पे कहिंदे कि अपनी पसंद दे गीत लाओ ते साड़ा नाम जरूर इस्तेमाल करो। मतलब सिर्फ अज गाने सुनने के मूड के विच ने कहिंदे अपनी पसंद का जिहड़ा मर्जी गीत ला दिओ। कहिंदे खरिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल जी, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया जी कोई भी गीत इस्तेमाल कोई भी गीत प्ले कर दीजिए कह रहे हैं। और इसके अलावा चक 14 PSB जिला श्रीगंगानगर से कुलदीप सिंह, राजविंदर जी और संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक दे वालों सत श्री अकाल जी। कोई भी गीत शामिल कर लो जी, बिल्कुल शामिल करेंगे आपका हम गीत। और इसके अलावा जो हमारे पास फरमाइश पहुंची है, कह रहे हैं कि दिल चाहता है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार टोडी जी, प्रमोद कुमार टोडी जी, पुष्पेंद्र कुमार टोडी जी, और कह रहे हैं कि कोई भी गीत शामिल कर लीजिए। और फिल्म दिल चाहता है जी पिंड मूलियांवाली से ज़िला फाजिलका 55 साल तो पुराना श्रोता, प्यार भरी नमस्कार विनोद काठपाल जी, प्रवीण काठपाल जी, हनी काठपाल जी, दीक्षा काठपाल जी, जन्नत काठपाल जी। और कहिंदे ने कि जो इन्होंने फरमाइश भेजी है और इस तो अगली बार तो प्ले करने हैं 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर के उत्ते इन्हों की फरमाइश प्ले करांगे। फिलहाल जिहड़े स्रोतियां ने सानू कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लेने उन्होंने लिए यह प्यारा जिहा ट्रैक लैके हाजिर हो रहा है। थोड़ा मित्र आर जे प्रविंदर।

हाँ जी नमस्कार। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल। रात के 10 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है शाम गज़ल। कहते हैं कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर।

कहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले। और अंजाम वफा ये जिस दिन, ये जिसने भी मोहब्बत की, अंजाम वफा है ये जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ जीने की सजा पा गई। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गजल।

कहते हैं कि वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। और उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गज़ल।

कहते हैं कि वो कई बार रूठे, हमने कई बार मनाया, हम एक बार रूठे और रिश्ता खत्म। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल, शाम में गजल।

वो गुजारी ना सकी हमें से, जो गुजारी ना सकी हमें से, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। और उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गज़ल।

नमस्कार। रात के 10:30 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्यार का नगमा है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल आपने ट्यून किया हुआ है। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे परविंदर और कार्यक्रम चल रहा है एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। और वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आ गया, ना जाने क्यों तेरे नाम पे रोना आ गया। कहते हैं कि इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द पे दर्द ए बेदवा पाया। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह पिन पूछा नल, एक प्यार का

कहते हैं कि उजाले अपनी यादें, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

102.7 MHz आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल है। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि वो खुश है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा।

वो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मुअस्सल फूल का है फूल किधर जाएगा। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का है, रिंद वो चैनल एक प्यार का नगमा है।

मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे ज़िंदगी की बद्दुआ ना दे। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।